प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7:00 श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर, आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति हैं। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8:00 प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक बांसुरी मंजरी की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9:00 और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11:00 से 1:00 तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। पूर्वजों की इच्छा आशा महत्वाकांक्षा क्रोध बैर प्रतिशोध, यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम ज्ञान संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्वग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्वग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या मृत्यु रक्तपात क्या इन्हीं पूर्वग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं, प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं। और अंधकार मन का हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। स्वयं विचार कीजिए।
1: मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बुनो आज अमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है जेम की अपने खेती ने हाथे बकरी गाय भेस नु पालन करो हो तो एणन तकी जुड़े जे संसाधन है एणनु आपणे बेहतर उपयोग हरते करी शकन एनु हुं महत्व है एने लईने। तो वात तो घणा कानी थाईंगा कार्यक्रम में पण कार्यक्रम नी शुरुआत में आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपणी वाते। तो भाईन बहनो आप हमरते रहेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: मिट्टी में पशुपालन नहीं होगा तो खेती में आप रासायनिक खाद लाके डालोगे, अगर रासायनिक नहीं भी डालोगे तो गोबर खाद अगर डालना होगा तो आपको खरीदना पड़ेगा, तो आपके जेब पे वो भारी पड़ेगा। उसी तरह अगर आप खाने के लिए एक अच्छा स्वच्छ अनाज चाहिए आपको, तो वो कैसे मिलेगा? देसी खाद बीज से। तो देसी खाद आपके पास नहीं होगा तो पोषण की दृष्टि से जो है आपको एक अच्छा शुद्ध जो भोजन है, गुणवत्तापूर्ण जो काफी पोषक तत्वों से भरा होता है, वो नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए दोनों को जोड़ना जरूरी है।
1: जी सर, आपने सही कहा। अब यही मैं ये जानना चाहूंगी कि खेत में चारा फसल क्या होती है और ये क्यों जरूरी है?
0: देखिए, चारा फसल की हम बात करते हैं तो सीधा सा ये है कि हमारे पास में जो पशु है उनको खाने के लिए चारा मिलना चाहिए, और उसके लिए हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो खेत में करते हैं। दूसरा बात ये है कि पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए जो किसान भाई है वो केवल बाजार से चारा खरीदने पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के खेत का है। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे ज्वार है, ज्वार जो है चारा फसल आपकी, आप अच्छे से जो पशुओं का स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं पशुओं के लिए। इसी तरह से बाजरी है, बाजरी हम जो है बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में अगर आप पशुओं के लिए करते हैं तो क्या होता है कि जैसे दुधारू पशु होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहती है, और जो दूध का उत्पादन है पशुओं के माध्यम से वो भी आपका अच्छा रहेगा, और पशुओं का स्वास्थ्य जो काफी अच्छा रहेगा उनका, तो इसके लिए भी जरूरी है। इसके साथ में मक्का देखते हैं तो मक्का का दोनों तरह से हम उपयोग करते हैं। तो मक्का एक तो खाने के लिए आपको मक्का हो जाती है, पशुओं के जो डंठल निकलते हैं उसका चारा आपको मिल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह हम कई प्रकार के जैसे घास की बात करते हैं तो घास हम लगाते हैं जो हमारे परंपरागत है तो उसका हम कर सकते हैं। कुछ दालें आप अगर लगाती हो तो उनसे भी आपको पशुओं को चारा मिलेगा उनकी पत्तियों के माध्यम से। तो ये चारा फसलें भी जरूरी है कि जब भी आप इसकी योजना बनाए तो आप दोनों संदर्भ को देखें।
1: बिल्कुल,
0: एक तो आपके घर परिवार के लिए पोषण सुरक्षा देखें कि क्या क्या खाने को मिलेगा और कैसे उसकी विविधता को कायम कर सकते हैं
1: जी,
0: वही विविधता पशुओं को चारा भी देगी। तो दोनों तरह से सोच के उसको करना चाहिए। दूसरा कि कई बार क्या होता है कि जब हम बुआई करते हैं
1: जी,
0: तो कुछ ऐसे फसलें हैं जिनसे चारा नहीं मिलता है, तो आप उनकी जो खेत की मेड़े हैं वहां पे आप घास लगा सकते हो, बाजरा जवार वो कर सकते हो, ताकि आप उन मेड़ों के माध्यम से भी आपको जो चारा उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह हमें देखना जरूरी है
1: जी सर। तो सर, जैसा कि आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और ढेर सारी बातों से वे अवगत हो पा रहे हैं
0: जी,
1: अब यही मैं ये जानना चाहूंगी कि पशुओं के गोबर का खेती में कैसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है?
0: देखिए, हमारे जो परंपराएं हैं हमारे समाज की, हम जानते हैं कि जब तक गोबर को पूरी तरह सड़ाया नहीं जाता है तो उसका उपयोग नहीं कर सकते
1: जी,
0: क्योंकि जैसे आपको गोबर अगर पशु ने दिया वो डायरेक्ट खेत में डालोगे तो वो ज्यादा प्रभावी या उतना गुण नहीं करेगा उस जमीन को जितना करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो इसके लिए हम कर सकते हैं, जैसे हम कंपोस्ट की बात करते हैं, जैसे आपके पास गाय भैंस बकरी है उनसे निकलने वाला गोबर है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट बेड बनाकर उसमें डाल सकते हैं
1: जी जी।
0: एक अच्छा जो है अभी काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो उकेड़ा जो है वो बहुत है कि आपने गड्ढा खोदा और उसमें आप गोबर डाल रहे हो और उसको पकने के लिए छोड़ दिया आपने, तो उससे भी आपको जो है बेहतर खाद मिलेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि खेत की जो फसल है उसके अवशेष हैं जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं आपके पास है, पशुओं का गोबर के साथ जो है उसको मिलाकर आप डालेंगे तो जो अवशेष है या फिर पशु जो चारा खा रहे हैं उसके जो अवशेष बचते हैं तो उनसे भी जो है गोबर के साथ में वो भी एक प्रोसेस हो जाता है और आपको एक अच्छी खाद मिल जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो हमेशा क्या होता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो उस खाद को पकने देते थे, बिल्कुल ताजा जो है उसका उपयोग जो खेती में नहीं करते थे
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: इस तरह हमें बेहतर खाद बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: दूसरा कि हमें हमारे पास जितनी खेती है उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास पशु पर्याप्त है या नहीं। अच्छा, पर्याप्त नहीं है तो आप पशु ले सकते हैं या छोटे पशु पाल सकते हैं, तो उस तरह आपकी जो खेत की खाद की सुरक्षा है वो एकदम तैयार रहेगी आपके लिए
1: जी सर। तो सर, जैसा कि आज आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जुड़े और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दोस्तों को दी
0: जी,
1: अब यही कार्यक्रम के अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास उतने पर्याप्त पशु होने चाहिए कि हमारे खेत के लिए पर्याप्त खाद मिले, तो आपकी घर की जो पोषण सुरक्षा है वो आपकी सुरक्षित रहेगी और आपकी जो जेब है उस पर भारी नहीं पड़ेगा, बाजार नहीं जाना पड़ेगा, बाजार की निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
1: बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपना कीमती अमूल्य समय हमारे श्रोता साथियों को दिया।
0: जी धन्यवाद।
2: जिम की भाई बोनो अपने अपने बस में मांगीलाल जी सर जुड़े तक करता ने एणाय आपने घनी असल तरीका तकी बताड़ियो है कि बकरी गाय ने भैंस तकी मलवा वाली जे चीजें है एणनु आपने प्रयोग खेती में हरते करी शक ने कई कई वातनु ध्यान राखी ने आनु लाभ आपने प्राप्त करी शक। तो अणा विषय माते जिम की बात घना कनी थी गई है, हवे टाइम थी गयो है आपने अणस कार्यक्रम तकी सूट पड़वानो। तो सूट तो पड़ा पण साथे पहले हमरी लायक और कितने मोरे पड़ो सूट।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: साथियों, आपने कभी किसी बच्चे से पूछा है कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? कशिश, कोई बच्चा कहता है डॉक्टर, कोई कहता है पुलिस अधिकारी, कोई शिक्षक बनना चाहता है तो कोई किसान, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार, तो कोई कहता है मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे गांव का नाम रोशन हो। बच्चों के ये छोटे छोटे जवाब वास्तव में बहुत बड़े सपनों की शुरुआत होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कई बार हम बड़े लोग अनजाने में बच्चों के सपनों को छोटा कर देते हैं। हम कह देते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमारे घर में इतना पैसा कहाँ है, पहले पढ़ाई तो ठीक से कर लो, गाँव के बच्चे इतना बड़ा सपना कैसे देख सकते हैं, या हम ये कह देते हैं कि ये तो आपके काम का सपना नहीं है, आप लड़की हैं, दूसरा सपना देखिए। लेकिन श्रोता साथियों, याद रखिए कि सपना देखने के लिए अमीरी नहीं हिम्मत चाहिए, और उस सपने को दिशा देने के लिए परिवार, शिक्षक और समाज का साथ चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में हम इसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे कि बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए कैसे प्रेरित करें और उनके सपनों को पूरा करने की राह में हम उनका साथ कैसे दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना हम कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि सपना केवल ये नहीं होता कि बच्चा बड़ा होकर कौन सी नौकरी करेगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों का सपना ये भी हो सकता है कि वह अपने गांव में अच्छा शिक्षक बने, वह खेती में नई तकनीक अपनाए, वह अपने परिवार की मदद करे, वह अच्छा खिलाड़ी बने, वह किताबें लिखे और साथ ही वह पेड़ पौधों और प्रकृति की रक्षा को भी महत्व दे, वह अपने आसपास के लोगों की मदद करे। यानी कि श्रोता साथियों, बच्चे का सपना उसकी रुचि, क्षमता और कल्पना से पैदा होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी कर्मचारी ही बनना चाहे। हमें बच्चे से ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हें वही क्यों नहीं बनना जो हम चाहते हैं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम किस काम को करके खुश होते हो, तुम्हें अपने आसपास क्या बदलना अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही सवाल बच्चे के भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने में मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बचपन में मन जो है वो बहुत कल्पनाशील होता है। बच्चा अपने सामने दिखाई देने वाली दुनिया से आगे की दुनिया की कल्पना कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: एक बच्चा मिट्टी से घर बनाते बनाते वास्तुकार बनने का सपना देख सकता है, खेत में पिता के साथ काम करते हुए कृषि वैज्ञानिक बनने की सोच सकता है, गांव के किसी शिक्षक को देखकर शिक्षक बनने की इच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी खिलाड़ी को देखकर खुद मैदान में उतरने का सपना देख सकता है। श्रोता साथियों, अगर उस समय उसे प्रोत्साहन मिलती है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर बार बार उसकी बात का मजाक बनाया जाता है, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है या उसके सपनों को असंभव बताया जाता है तो धीरे धीरे वह अपनी इच्छा बताना ही बंद कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे बच्चे के सपनों को तुरंत सही या गलत कहने के बजाय पहले सुनना जरूरी है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। बच्चा घर में जिस तरह की बातें सुनता है उसी तरह अपने बारे में सोचने लगता है। अगर कशिश माता पिता उससे कहते हैं कि तुम कोशिश करोगे तो सीख सकते हो, गलती होना कोई बुरी बात नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है, तो बच्चा मुश्किल काम करने से डरता नहीं है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन यदि अगर हर गलती पर उसे डांट मिले और हर समय दूसरे बच्चों से तुलना हो तो उसके मन में यह बात बैठ सकती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बच्चे की सफलता से ज्यादा उसके प्रयास की तारीफ कीजिए। बच्चे ने चित्र बनाया है तो केवल यह मत कहिए कि बहुत सुंदर है, पूछिए कि तुमने यह चित्र बनाने के बारे में कैसे सोचा। बच्चे ने कोई छोटी चीज ठीक की है तो कहिए कि तुमने कोशिश की है, यही सबसे अच्छी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे छोटे छोटे शब्द कशिश बच्चे के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम बातें कर रहे हैं, ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें किताबें और कहानियां बन सकती है सपनों की खिड़की को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, हर परिवार के पास महंगे साधन हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे को किताब, कहानी, बातचीत और आसपास की दुनिया से सीखने का अवसर जरूर दिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: उसे महान व्यक्तियों की कहानी सुनाइए, लेकिन केवल उसकी सफलता की कहानी नहीं, यह भी बताइए कि उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितनी बार असफल हुए और फिर भी प्रयास क्यों नहीं छोड़ा।
1: बिल्कुल।
0: बच्चा जब यह समझता है कि सफल व्यक्ति भी शुरुआत में साधारण व्यक्ति ही था, तो उसके भीतर एक विश्वास पैदा होता है, अगर मैं सीखता रहूं और मेहनत करता रहूं तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। ऐसी चीजें बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: किसी बच्चे का गाँव में जन्म लेना उसके सपनों की सीमा तय नहीं करता। गांव का बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, खिलाड़ी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कलाकार बन सकता है, उद्यमी बन सकता है, किसान बनकर भी खेती को नई दिशा दे सकता है। इसलिए हमें बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कि तुम कहाँ पैदा हुए हो, यह तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन तुम कहाँ तक पहुँचोगे इसकी सीमा तुम्हारा जन्म स्थान तय नहीं करता। इसलिए गाँव के बच्चे अपने आस पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रकृति, खेती, पशुपालन, मेहनत, सामूहिक सहयोग और संसाधनों का उपयोग।
1: जी हाँ।
0: इन अनुभवों को उनकी कमजोरी नहीं, सीखने की ताकत बनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही बच्चों पर सपना थोपना नहीं बल्कि सपना समझना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों, बच्चे को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने का मतलब यह नहीं है कि माता पिता अपना अधूरा सपना बच्चे पर ही डाल दें।
0: बिल्कुल।
1: अगर पिता डॉक्टर बनना चाहते थे तो जरूरी नहीं है कि बेटा भी डॉक्टर ही बने। अंजलि जी, अगर माँ चाहती थी कि बेटी सरकारी नौकरी करे तो जरूरी नहीं है कि बेटी का सपना भी वही हो। कहने का मतलब यही है कि हमें बच्चों को रास्ता दिखाना होगा, लेकिन रास्ता चुनने में उसकी आवाज भी सुननी होगी। उसे अलग अलग चीजें सीखने का मौका दीजिए, कभी खेल, कभी चित्रकारी, कभी कहानी, कभी खेती, कभी विज्ञान से जुड़ी गतिविधियां, तो कभी कोई हस्तकला। धीरे धीरे बच्चा कुछ समझने लगता है कि उसे किस काम में सबसे ज्यादा आनंद आता है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ सपनों को लक्ष्य में बदलने की जरूरत है। जी हाँ श्रोता साथियों, सपना देखना पहला कदम है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बदलना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: मान लीजिए कि बच्चा कहता है कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, तो हम यह नहीं कहेंगे कि यह बहुत बड़ा सपना है, बल्कि हम पूछेंगे कि आज से तुम क्या कर सकते हो। शायद वह रोज थोड़ा थोड़ा विज्ञान पढ़े, नई चीजों के बारे में सवाल पूछे, छोटे प्रयोग करे, किताबें पढ़े और अपने शिक्षक से सवाल पूछे।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह कोई बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता है तो रोज अभ्यास की आदत बन सकती है, यानी कि बड़ा सपना, छोटी रोजाना की कोशिश और मजबूत शुरुआत, यही है सपने को लक्ष्य में बदलने की पहचान।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, में बच्चों को असफलता से डरना नहीं सिखाना है। श्रोता साथियों, बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या कई बार असफलता का डर होता है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि बच्चा प्रतियोगिता में हार गया, परीक्षा में कम अंक आए, खेल में चयन नहीं हुआ, चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं मिला, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, बल्कि इसके बजाय हम बच्चों से ये पूछे कि इस बार क्या सीखने को मिला, क्योंकि असफलता अंत नहीं है, कई बार वही हमें अगली कोशिश के लिए तैयार करती है। अंजलि जी, बच्चों को हमें यह समझाना जरूरी है कि हारने से सपना खत्म नहीं होता, कोशिश छोड़ देने से रास्ता जरूर रुक जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में समुदाय भी बच्चों को सपनों का साथी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसे कि साथियों, बच्चे केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरा समुदाय बच्चों के भविष्य को आकार देता है। गांव में यदि शिक्षक बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, कोई किसान खेती के नए तरीके बताएगा, कोई खिलाड़ी बच्चों को खेल का अभ्यास करवाए और कोई कलाकार अपनी कला सिखाएगा, तो बच्चों के सामने सीखने के नए रास्ते खुल सकते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि बच्चे केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरा समुदाय बच्चे के भविष्य को आकार देता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसा कि आपने अभी बताया, इसी के साथ यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें गांव में ऐसे कुछ छोटी मोटी गतिविधियां शुरू करनी है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि बच्चे के लिए कहानी और पुस्तक पढ़ने का समय, स्थानीय लोगों से मेरे काम की मेरी कहानी की बातचीत, बच्चों के चित्र और विज्ञान गतिविधियां, स्थानीय खेलों की प्रतियोगिता, बच्चों के सपनों पर बातचीत, महीने में एक दिन में बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम, इन गतिविधियों के लिए हमेशा बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है समय, प्रोत्साहन और बच्चों पर भरोसे की।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, जरा सोचिए कि एक छोटा बच्चा अपने घर के आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा जिससे सबको मुझ पर गर्व हो। उस समय उसे यह मत बताइए कि रास्ता कितना कठिन है। पहले उसका सपना सुनिए, उसके बाद उसे रास्ता समझाइए, उसका हाथ पकड़िए, लेकिन उसकी जगह चलने की कोशिश मत कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बच्चे को हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती जो उसके लिए रास्ता तय कर दे। कई बार उसे केवल एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे कि तुम कोशिश करो, हम तुम्हारे

0: है।
1: जी हाँ।
0: यही एक वाक्य बच्चे के भीतर बहुत बड़ा विश्वास पैदा कर सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में माता पिता क्या कर सकते हैं अगर इसको लेकर बात करें तो आज से हम अपने घर में कुछ छोटी शुरुआत कर सकते हैं साथियों। पहले ये कि रोज कुछ मिनट बच्चे से उसकी पसंद और नापसंद, उसके सपनों के बारे में बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा यह कि उसकी तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करेंगे। तीसरा ये अंजलि जी कि उसकी गलती पर तुरंत डांटने के बजाय उसे सुधारने का अवसर देंगे।
0: बिल्कुल।
1: चौथा यह कर सकते हैं माता पिता कि बच्चे की रुचि को पहचानने और उसे सीखने के अवसर देंगे। सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना सिखाएंगे और बच्चों को ये विश्वास दिलाएंगे कि मेहनत सीखने की इच्छा और लगातार प्रयास बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे हम कि किस तरीके से बच्चे सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए। तो श्रोता साथियों, बस हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है और निरंतर आगे किस तरीके से बढ़ना है उसके लिए प्रेरणा देनी है।
1: बिल्कुल।
0: ताकि बच्चा जो है वो बिना डर के अपने सपनों को पूरा कर पाए। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे, सपना बड़ा रखना जरूरी है, शुरुआत छोटी हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: आशा करते हैं कशिश के आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से जो बातचीत रही है कि बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए हम प्रेरित कैसे कर सकते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये सभी बातें श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी युवा साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है युवा और देश सेवा को लेकर, यानी कि युवा और देश सेवा रक्षा क्षेत्र में करियर की संभावनाएं किस तरह से कर सकते हैं। श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि हर युवा के मन में अपने करियर को लेकर कई सवाल होते हैं।
0: जी
1: मैं क्या बनूं, किस क्षेत्र में जाऊं, कौन सा करियर मेरे लिए सही होगा, क्या मेरा काम समाज और देश के लिए भी उपयोगी हो सकता है। अगर श्रोताओं आपके मन में भी कहीं ये सवाल आया है कि मैं अपने करियर के साथ देश की सेवा कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ, तो रक्षा क्षेत्र आपके लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना का नाम गर्व के साथ सामने आता है। हम देखते हैं कशिश के हर वर्ष 8 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
0: जी हाँ।
1: और ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना और उसके गौरवपूर्ण सफर को याद करने का अवसर है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्या ना युवा साथियों को इस प्यारे से विषय से जुड़ा ही एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं युवा और देश सेवा को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था कि अक्सर हमारे युवा साथियों के मन में यह सवाल आता है कि उन्हें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, और वे अक्सर सोचते रहते हैं कि कौन सा क्षेत्र उनके लिए बेहतर रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में हमारे युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि युवा साथियों, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि करियर ऐसा चुने जिसमें सपनों की उड़ान भी हो और देश के सम्मान की पहचान भी हो।
1: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कशिश की भारतीय वायुसेना को हम अक्सर आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, वर्दीधारी जवानों के रूप में दिखते हैं, लेकिन वायुसेना की भूमिका इससे कहीं व्यापक है।
0: बिल्कुल,
1: इसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत होती है। पायलट, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, संचार विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी और बहुत सारे अन्य कर्मचारी।
0: जी जी,
1: यानी कि श्रोताओं, रक्षा क्षेत्र में करियर का मतलब केवल हथियार या युद्ध से जुड़ा काम करना नहीं है। इसमें विज्ञान होता है, तकनीक होता है, चिकित्सा, प्रबंधन, संचार, इंजीनियरिंग और नेतृत्व जैसे अनेक क्षेत्र शामिल है।
0: बिल्कुल,
1: आज का युवा तकनीक के साथ बड़ा हो रहा है, उसके पास नई चीजें सीखने की क्षमता भी है, ये हम भी देख रहे हैं कशिश। डिजिटल दुनिया की समझ भी है और नई चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस भी है।
0: जी जी,
1: यही कारण है कि रक्षा क्षेत्र में भी युवाओं के लिए अनेक प्रकार के अवसर मौजूद है। कहा गया है कि वर्दी सिर्फ पहचान नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। देश सेवा से भावना नहीं, अनुशासन और कर्म की पहचान है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अब यही बात करते हैं कि हमारे युवा साथियों के लिए भारतीय वायुसेना का करियर क्यों जरूरी है। तो युवाओं, आपके लिए भारतीय वायुसेना में करियर का आकर्षण केवल एक सम्मानजनक नौकरी तक सीमित नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति को अनुशासन के साथ साथ नेतृत्व, टीम वर्क और जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर मिलता है। वायुसेना में काम करने वाला व्यक्ति, जागृति जी, अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के साथ एक बड़े उद्देश्य का भी हिस्सा

0: शैक्षणिक योग्यताएं, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया निर्धारित होती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए जो युवा वायुसेना को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनकी शैक्षणिक योग्यता और रुचि किस क्षेत्र से मेल खाती है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, कई युवाओं का सपना होता है कि वे आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान उड़ाएं, लेकिन पायलट बनना केवल विमान उड़ाने का रोमांच नहीं है। इसके लिए जिम्मेदारी, एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता, शारीरिक और मानसिक तैयारी तथा कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए अगर हमारा सपना पायलट बनने का है श्रोताओं, तो केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, उस सपने के लिए सही दिशा में लगातार तैयारी करना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए कहा गया है कि आसमान छूने का सपना वही साकार करता है जो जमीन पर रहकर मेहनत करना सीखता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर बात करें तकनीकी क्षेत्र में युवाओं की भूमिका की, तो आज रक्षा क्षेत्र तेजी से तकनीक आधारित हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: आधुनिक विमान, रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ अन्य तकनीकी प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों की जरूरत होती है। इसलिए जिन युवाओं की रुचि विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या तकनीकी क्षेत्र में है, तो वे रक्षा के क्षेत्र में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जागृति जी, ये युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है कि अगर उन्हें मशीनों और तकनीकों में रुचि है, तो श्रोता साथियों, ये कौशल केवल निजी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, आप इसे देश सेवा से भी जोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें जो चल रही है, वो निरंतर ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी भारतीय वायुसेना दिवस को लेकर, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, अगर हमें इस सफर में जाना है तो हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है, उस पर हमें जोर देना होगा।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि कशिश, अगर कोई युवा भारतीय वायुसेना या रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले आधिकारिक भर्ती और प्रवेश संबंधी जानकारी देखनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: अलग अलग प्रवेश योजनाओं में पात्रता और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है श्रोताओं, इसलिए सोशल मीडिया पर मिलने वाली अधूरी या गलत जानकारी पर भरोसा करने के बजाय संबंधित आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही युवा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। जिस प्रवेश के लिए जिस विषय और योग्यता की आवश्यकता हो उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है श्रोता साथियों, समय प्रबंधन। साथ ही शारीरिक फिटनेस भी जरूरी है, सामान्य ज्ञान और देश दुनिया की समझ भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आत्मविश्वास की।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए श्रोता साथियों, चयन की तैयारी केवल परीक्षा के कुछ महीनों में नहीं होती, इसकी नींव हमारी रोजमर्रा की आदतों से बनती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे वागड़ रेडियो से जुड़े भी कई ऐसे श्रोता साथी हैं जो गांव और छोटे शहरों से हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उन्हें भी इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना होता है, इसलिए हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप किसी गांव या कस्बे से हैं तो अपने सपनों को आप छोटा मत समझिए।
0: बिल्कुल।
1: आपके पास संसाधन किसी बड़े शहर के युवा से अलग हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने की क्षमता, सीखने की इच्छा और लक्ष्य के प्रति समर्पण किसी स्थान की संपत्ति नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: आज इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के कारण युवाओं के पास जानकारी पाने के कई रास्ते हैं जागृति जी। जरूरत है तो सिर्फ सही जानकारी पहचानने की और उनका सही उपयोग करने की।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कहा गया है कि गांव की मिट्टी से उठे कदम भी आसमान तक पहुंच सकते हैं, बस सपनों के साथ सही दिशा और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि देश सेवा का मतलब केवल सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करना ही नहीं होता। एक शिक्षक अच्छे नागरिक तैयार करता है, यह देश सेवा है।
1: जी जी।
0: एक डॉक्टर जरूरतमंदों का इलाज करता है, ये देश सेवा है। एक वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करता है, एक किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है। एक युवा ईमानदारी से अपना कार्य करता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, तो ये भी देश सेवा है।
1: जी जी।
0: लेकिन श्रोताओं, रक्षा क्षेत्र में करियर चुनने वाले युवाओं को देश की सुरक्षा से जुड़ी विशेष जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलता है। इसलिए भारतीय वायुसेना दिवस हमें केवल वायुसेना को याद करने का दिन नहीं, बल्कि युवाओं को सोचने का अवसर भी देता है कि हम अपनी क्षमता और प्रतिभा को देश के काम कैसे ला सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से हमारे दोस्तों से हम ये कहना चाहेंगे कि युवा साथियों, अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा है और आपकी रुचि रक्षा के क्षेत्र में है तो अपने सपने को गंभीरता से लीजिए, अपने विषय को समझिए, अपनी योग्यता को पहचानिए और आधिकारिक जानकारी को जुटाइए, अपनी पढ़ाई मजबूत कीजिए, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार भी कीजिए और सबसे जरूरी अनुशासन को अपनी आदत में अपनाइए।
0: बिल्कुल।
1: करियर का चुनाव केवल इस आधार पर न करें कि कौन सी नौकरी ज्यादा आकर्षक आपको दिखाई दे रही है, बल्कि ये भी सोचे दोस्तों कि आपकी रुचि, आपकी योग्यता और आपका व्यक्तित्व किस क्षेत्र के साथ सबसे बेहतर तरीके से जुड़ सकता है।
0: बिल्कुल। और भारतीय वायुसेना दिवस पर हम उन सभी वीरों और कार्मिकों के योगदानों को सम्मान पूर्वक याद करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और सेवा में अपना योगदान दिया था।
1: बिल्कुल।
0: और आज के युवाओं से यही कहना चाहेंगे श्रोताओं कि सपना सिर्फ अपने भविष्य का मत देखिए, अपने देश के भविष्य में भी अपनी भूमिका को खोजिए।
1: जी हाँ।
0: जहाँ जुनून को अनुशासन मिले, जहाँ हुनर को जिम्मेदारी मिले, वहीं से देश सेवा की राह निकलती है। तो श्रोता साथियों, आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना और रक्षा क्षेत्र युवाओं के लिए केवल रोजगार का क्षेत्र नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन, नेतृत्व और देश सेवा से जुड़ा एक करियर विकल्प भी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर आपके मन में भी कोई सपना है तो उसे सिर्फ सोच कर मत छोड़िए, उसके बारे में सही जानकारी जुटाइए, तैयारी शुरू कीजिए और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि मेहनत को अपनी पहचान जरूरी है और अपने हुनर से भारत के भविष्य को आप मजबूत बनाइए।
1: बिल्कुल जागृति जी, इन्हीं आशाओं के साथ, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

बहनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय रहने वाला है देश की सुरक्षा में हमारी जिम्मेदारी को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जब हम देश की सुरक्षा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर सीमा पर तैनात सैनिकों की तस्वीर आती है। बर्फीली पहाड़ियों पर खड़े जवान कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हुए सुरक्षा बल और दिन रात अपनी ड्यूटी निभाते हमारे वीर जवान। लेकिन क्या देश की सुरक्षा केवल सीमा पर खड़े जवानों की जिम्मेदारी है? नहीं, देश की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: सीमा पर सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो देश के भीतर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों से राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक कानून का सम्मान करता है श्रोताओं, अफवाहों से बचता है, सही जानकारी साझा करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, साइबर सुरक्षा का ध्यान रखता है और जरूरत के समय प्रशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करता है।
0: बिल्कुल,
1: और यही सोच सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत करती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से आपको अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं देश की सुरक्षा में हमारी जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे साथियों, जागो, देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी पहचानो, देश की सुरक्षा में अपना छोटा सा योगदान जरूर निभाओ।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि देश की सुरक्षा का अर्थ केवल बाहरी खतरे से देश की रक्षा करना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सुरक्षा का संबंध हमारे समाज, परिवार, गाँव, शहर, पर्यावरण और डिजिटल दुनिया और नागरिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी गाँव में लोग आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान करते हैं तो वह गांव मजबूत होता है। अगर नागरिक अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय जानकारी की सत्यता जांचते हैं तो समाज मजबूत होता है। और अगर लोग साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहते हैं तो डिजिटल सुरक्षा मजबूत होती है। अगर नागरिक आपदा के समय एक दूसरे की मदद करते हैं तो देश की सामूहिक क्षमता बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, देश की सुरक्षा जो है वो एक बड़ा आधार है जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी का।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, कल्पना कीजिए आपके गांव या मोहल्ले में कोई संदिग्ध स्थिति दिखाई देती है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद से कोई कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदार व्यक्ति या संबंधित प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। और अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसी खबर आए जिससे लोगों में डर या तनाव पैदा हो सकता है तो उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय पहले उसकी सत्यता जांचनी जरूरी है। यही जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। साथ ही देश की सुरक्षा में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम कानून और नियमों का सम्मान करें। हम देखते हैं अंजलि कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। एक जिम्मेदार नागरिक ये समझता है कि नियम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी है। जब लाखों नागरिक नियमों का पालन करते हैं श्रोताओं, तो देश में व्यवस्था मजबूत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज सूचना जो है वो बहुत तेजी से फैलती है।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया के माध्यम से कोई संदेश कुछ ही मिनटों में हम देखते हैं कि हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन श्रोता साथियों, हर संदेश सही हो या जरूरी नहीं है। कभी कभी गलत जानकारी समाज में डर, भ्रम और तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी संवेदनशील खबर को बिना जांचे आगे न भेजें। एक संदेश भेजने से पहले रुकिए, सोचिए और सत्यता जांचिए। याद रखिए कि सही जानकारी सुरक्षा बढ़ाती है और गलत जानकारी परेशानी बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं जागृति जी कि हमारा बहुत सारा जो समय है वो मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, बैंकिंग, खरीदारी, सरकारी सेवाएं और बातचीत, सब कुछ डिजिटल माध्यम से हो चुका है। इसलिए श्रोता साथियों, साइबर सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी बन गई है। हमें अपने पासवर्ड सुरक्षित रखने चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले हमें सोचना होगा। ओटीपी और बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। किसी संदेश या कॉल के बारे में परिवार के बड़े लोगों और जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्था को जानकारी देना भी जरूरी है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी होती है।
0: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हमें कहना चाहेंगे कि बाढ़, भूकंप, आग, तेज बारिश या किसी अन्य आपदा के समय नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे समय में घबराहट फैलाने के बजाय शांत रहना चाहिए, जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और आपातकालीन व्यवस्था में बाधा नहीं डालनी चाहिए। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की सहायता करना हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। श्रोताओं, सुरक्षा केवल खतरे से बचना नहीं है, सुरक्षा का अर्थ है मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें हो रही है कि किस तरीके से देश की सुरक्षा में हमारी जिम्मेदारी है। ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना आपदा के समय हमारी जिम्मेदारी क्या रहती है, यही अब बात करें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की, तो श्रोता साथियों, सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल, सरकारी भवन, बसें, पानी की टंकियां और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं हम सभी की संपत्ति है। इसका नुकसान जनता का ही नुकसान है, इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना केवल किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि समाज के संसाधनों को नुकसान पहुंचाना है। अगर हम अपने गांव की सड़क, स्कूल, पानी की व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल करते हैं जागृति जी, तो हम राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हमें चाहिए कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी हम देखरेख करें और ध्यान रखें कि किस तरीके से इसका ध्यान रखना भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के कर्तव्यों में ही शामिल होता है।
1: बिल्कुल अंजलि। साथ ही हम भारत विविधताओं का देश है, हम सभी जानते हैं। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा खानपान अलग हो सकता है और है भी सही, हमारा पहनावा भी अलग है और परंपराएं भी अलग हो सकती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता। किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी भाषा, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर भेदभाव न करना भी देश की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है। जब समाज में विश्वास और भाईचारा बढ़ता है श्रोताओं, तो देश मजबूत होता है। इसीलिए हमें मतभेदों के बावजूद संवाद बनाए रखना होगा। देश के युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की भी महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं अंजलि। हम देखते हैं कि युवाओं की ऊर्जा अगर शिक्षा, कौशल, नवाचार, खेल, सामाजिक सेवा और रचनात्मक कार्यों में लगती है तो देश आगे बढ़ता है। युवाओं को गलत जानकारी, ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध और किसी भी प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि से सावधान रहना जरूरी है।
0: जी जी।
1: सही जानकारी प्राप्त करना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना और समाज के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम अक्सर देश की सुरक्षा को केवल मानव सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, पर्यावरण भी हमारी सुरक्षा का आधार है।
1: बिल्कुल।
0: जल, जंगल, जमीन और जीव विविधता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ों की रक्षा करना, पानी बचाना, कचरे का सही प्रबंधन करना और प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना भी बहुत जरूरी है, और इन सारी चीजों को लेकर आने वाली पीढ़ियों को भी हमें कई सारी चीजें सिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक सुरक्षित देश वही है जहाँ नागरिक अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करता हो। यही बात करें तो हमारे श्रोता साथियों से कुछ सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जैसे आप अगर अपने गांव, मोहल्ले, शहर और देश की सुरक्षा के लिए आज कुछ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? शायद आपका जवाब बहुत बड़ा न हो, लेकिन आप कह सकते हैं श्रोता साथियों कि मैं अफवाह नहीं फैलाऊंगा, मैं साइबर ठगी से सावधान रहूंगा, मैं नियमों का पालन करूंगा, मैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपदा के समय जरूरतमंद की मदद करूंगा। यही छोटे छोटे संकल्प मिलकर बड़े बदलाव का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कह सकते हैं कि सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है। सच्चा स्वराज तब मजबूत होता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझते हैं। हम अक्सर पूछते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी पूछना चाहिए कि देश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। श्रोताओं, अपने काम को ईमानदारी से करना, नियमों का पालन करना, दूसरों का सम्मान करना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, सही जानकारी फैलाना और जरूरत के समय समाज के साथ खड़ा होना, ये सभी राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। देश को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े पद पर होना जरूरी नहीं है। एक किसान ईमानदारी से खेती करके योगदान देता है, एक शिक्षक बच्चों को ज्ञान और जिम्मेदारी की सीख देकर योगदान देता है, एक डॉक्टर सेवा देकर योगदान देता है, एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करके अपना योगदान देता है और एक नागरिक नियमों का पालन करके योगदान देता है। यानी कि अंजलि, देश की सुरक्षा और मजबूती में हर नागरिक की भूमिका जरूर होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही श्रोता साथियों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, मान लीजिए कि किसी गांव में एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा कचरा देखकर सोचता है कि यह मेरा काम नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है, तीसरा भी यही सोचता है, लेकिन एक व्यक्ति आगे बढ़कर कचरा उठाता है और लोगों से कहता है कि ये रास्ता हम सभी का है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी हम सभी की है। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और यही नागरिक जिम्मेदारी है कि देश भी ऐसा ही बनता है। एक व्यक्ति की जागरूकता दूसरे को प्रेरित करती है और धीरे धीरे पूरा समाज जो है वो जागरूक बनता जाता है।
1: बिल्कुल। तो हमारे श्रोता साथियों को अंजलि कहना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर खड़े जवानों की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जवान सीमा की रक्षा करते हैं और हम नागरिक देश के भीतर जिम्मेदारी, अनुशासन, एकता और जागरूकता की रक्षा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमारी छोटी सी सावधानी किसी बड़ी परेशानी को रोक सकती है। हमारी सही जानकारी किसी अफवाह को फैलने से रोक सकती है, हमारा अनुशासन व्यवस्था को मजबूत कर सकता है, हमारा भाईचारा समाज को जोड़ सकता है और हमारी जिम्मेदारी देश को मजबूत बना सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, हम अफवाह न फैलाएं, न गलत जानकारी पर विश्वास करें, कानून और नियमों का सम्मान करें, प्रकृति और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, डिजिटल दुनिया में सावधान रहें और जरूरत के समय अपने समाज के साथ खड़े रहें, क्योंकि सुरक्षित देश केवल मजबूत सीमाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से बनता है और यही सच्चे स्वराज की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, जिम्मेदार नागरिक, मजबूत समाज और सुरक्षित राष्ट्र,
1: बिल्कुल
0: आहो मिलकर निभाएं श्रोता साथियों अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही सच्चे स्वराज की तैयारी है। इसी संदेश के साथ अब कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज की सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, लेकिन क्यों न जागृति जी जाने से पहले एक और प्यारे से गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: मोटा अनाज
1: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
2: बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
0: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
1: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक क्यों और समय पर चिकित्सीय सलाह लेने की आदत क्यों जरूरी है। हम सभी जानते हैं श्रोता साथियों कि जब शरीर में कोई परेशानी होती है, बार बार सिर दर्द, लगातार खांसी, पेट दर्द, कमजोरी, चक्कर, बुखार और कोई और तकलीफ हो तो हमने से कई लोग तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाने के बजाय पहले घर पर ही इंतजार करते हैं। कोई कहता है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई पड़ोसी या रिश्तेदार की सलाह से दवा ले लेता है और कई बार मन में एक झिझक भी होती है।
0: जी हाँ,
1: डॉक्टर को क्या बताऊंगी, इतनी छोटी सी बात के लिए स्वास्थ्य केंद्र क्यों जाऊं या लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, बीमारी छोटी हो या बड़ी, उसके बारे में सही समय पर चिकित्सीय सलाह लेना समझदारी हो सकता है। आज हम जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा कि स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक आखिरकार हमें क्यों होती है और इस झिझक को दूर करके समय पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेने की आदत कैसे बनाई जा सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक क्यों और समय पर चिकित्सीय सलाह लेने की आदत क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हम रोज के काम वो आसानी से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: परिवार की जिम्मेदारियां निभा पाते हैं, मेहनत कर पाते हैं और अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, जब स्वास्थ्य खराब होता है तो छोटे से परेशानी भी हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कई दिनों से कोई परेशानी हो रही होती है लेकिन वह स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास जाने से बचता रहता है। कोई कहता है कि अभी तो दर्द थोड़ा ही है, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि अस्पताल जाने में समय लगता है। कोई पैसे की चिंता करता है तो कोई जांच के नाम पर डर जाता है। कई बार श्रोता साथियों, लोग यह सोचकर भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाते कि कहीं कोई बीमारी न निकल जाए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि कई बार हम किसी गंभीर लक्षण को मामूली समझ लेते हैं। बुखार आया तो कहते हैं कि मौसम बदलने की वजह से होगा, कमजोरी हुई तो कहते हैं काम ज्यादा हो गया इसलिए हो गया होगा, पेट दर्द हुआ तो कहते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। श्रोता साथियों, एक दो दिन तक इंतजार करना कभी कभी ठीक हो सकता है लेकिन जब परेशानी बनी रहे, बढ़ती जाए या बार बार हो, तब उसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। शरीर में दिखाई देने वाला बदलाव हमारे लिए एक संकेत हो सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि घर में पहले किसी बीमारी में इस्तेमाल हुई दवा पड़ी हो तो कई बार लोग क्यों सोचते हैं कि बिना चिकित्सा सलाह हम यही दवाई दोबारा ले लेते हैं, लेकिन हर बार एक जैसे लक्षण का कारण एक जैसा हो जरूरी नहीं है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की दवा देखकर अपने लिए वही दवा लेना सही आदत नहीं है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या लंबे समय से बीमारी से परेशान व्यक्ति के मामले में विशेष सावधानियां हमें रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि कुछ लोग डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जांच करवाने के बाद कोई गंभीर बीमारी है वो सामने न आ जाए।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों, बीमारी का पता चलना डरने की बात नहीं है। बीमारी का समय पर पता चलना तो इलाज की दिशा में हमारा पहला कदम हो सकता है। अगर किसी परेशानी का समय पर पता चल जाए अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर उचित सलाह हमें दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे की जांच का इलाज भी शुरू किया जा सकता है। इसके उलट बीमारी को छुपाने से श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि वो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है।
1: जी जी,
0: इसलिए हमें यह सोच बदलने की जरूरत है कि जांच करवाने पर कोई बीमारी निकल जाएगी। सच्चाई तो यह है कि जांच बीमारी पैदा नहीं करती बल्कि बीमारी के बारे में जानकारी देती है।
1: जी हाँ मनीषा, कुछ लोग अपनी परेशानी किसी स्वास्थ्य कर्मी को बताने में संकोच करते हैं, खासकर ऐसे समस्या जिसमें निजी या व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी पड़े। लेकिन हमें ये समझना होगा श्रोता साथियों कि स्वास्थ्य कर्मी का काम हमारे परेशानी को समझना और सही सलाह देना है। जिस बात को हम छिपाने में शर्म महसूस कर रहे हैं, वही बात अगर समय पर बता दी जाए तो बीमारी को पहचानने और उसका सही उपचार शुरू करने में मदद मिल सकती है। कई बार बीमारी से ज्यादा हमें समाज की बातों का डर लगता है कि इतने से छोटी बात पर अस्पताल चली गई, कुछ नहीं था, बेकार में जांच करवा ली, पहले घर का इलाज कर लेती, फालतू में पैसे बर्बाद किए। लेकिन श्रोता साथियों, आपकी सेहत का फैसला दूसरे लोगों की राय से नहीं होना चाहिए। अगर समय पर जांच या सलाह लेने से समस्या जल्दी पहचान में आती है तो स्वास्थ्य केंद्र जाना बिल्कुल सही कदम है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से बहुत सी बार लोगों को स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक महसूस होती है और इससे हमें कैसे बचना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमें ही रखना होगा।
1: जी हाँ।
0: यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे आपको कि किसी भी बीमारी में समय पर सलाह मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि समस्या को शुरुआत में ही समझने का मौका मिल जाता है। मान लीजिए मनीषा कि किसी व्यक्ति को लगातार कमजोरी महसूस हो रही है, वह इसे केवल काम की थकान समझकर महीनों तक नजरअंदाज करता रहता है, लेकिन अगर वह समय पर स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेता है तो डॉक्टर उसके लक्षण को देखकर जरूरी जांच की सलाह दे सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: और समस्या का कारण पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह लगातार बुखार, सांस लेने में परेशानी, शरीर में असामान्य सूजन, बार बार चक्कर आना, लगातार दर्द या किसी बीमारी के लक्षण को केवल घरेलू उपायों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है। समय पर सलाह लेने का मतलब यह नहीं है श्रोता साथियों कि हर छोटी परेशानी में घबराकर अस्पताल जाना है। इसका मतलब है कि अपने शरीर के संकेतों को समझना और जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति से सही सलाह लेना।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज हमारे हाथ में मोबाइल है, कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर हम तुरंत इंटरनेट पर जानकारी खोज लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इंटरनेट से श्रोता साथियों सामान्य जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन इंटरनेट किसी व्यक्ति की जांच करके उसकी बीमारी तय नहीं कर सकता है।
0: जी जी।
1: एक ही लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग कारणों से हो सकता है, इसलिए श्रोता साथियों इंटरनेट पर मिली जानकारी को डॉक्टर की सलाह का विकल्प हमें नहीं समझना चाहिए। अगर किसी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंता है तो उसे योग्य चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी से बात करना हमारे लिए बेहतर हो सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही अब श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे हम कार्यक्रम के माध्यम से कि समय पर चिकित्सक सलाह लेने की आदत केवल एक व्यक्ति की नहीं पूरे परिवार की आदत बननी चाहिए। घर में अगर बच्चे को बार बार कोई परेशानी हो रही हो, बुजुर्ग की तबीयत में बदलाव दिख रहा हो या परिवार के किसी सदस्य की पुरानी बीमारी की नियमित जांच जरूरी है तो इसे टालना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार के बड़े अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने को सामान्य और जरूरी काम मानेंगे तो बच्चे भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होंगे। उन्हें यह सिखाना जरूरी है कि बीमारी छिपानी नहीं है, लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है, बिना सलाह दवा नहीं लेनी है और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेने में झिझक भी नहीं करनी है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम स्वास्थ्य केंद्र तो पहुंच जाते हैं, लेकिन
1: हाँ।
0: डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को पूरी जानकारी नहीं देते, इसलिए अपने परेशानी बताते समय यह बताना उपयोगी है कि समस्या कब से है, कितनी बार होती है, बढ़ रही है या कम हो रही है और पहले से कौन सी दवा चल रही है या नहीं। अगर डॉक्टर कोई जाँच करवाने या दवा लेने की सलाह दे तो उसे समझ कर ले, कुछ समझ में न आए तो दोबारा पूछने में बिल्कुल भी संकोच न करें, क्योंकि सवाल पूछना शर्म की बात नहीं, अपनी सेहत को समझना हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि अपने सेहत के प्रति हमें जिम्मेदार बनना है। स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं है कि हम हर छोटी परेशानी से घबराकर अस्पताल भागें। इसका मतलब यह है साथियों कि अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना और जरूरत पड़ने पर सही समय पर सही व्यक्ति से सलाह लेना। न तो हर परेशानी को गंभीर बीमारी समझना चाहिए और न ही हर परेशानी को नजरअंदाज करना चाहिए। इन दोनों के बीच संतुलन है वो अंजलि जी हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत को लेकर कुछ छोटी छोटी आदतें हैं वो हमें अपनानी चाहिए। पहली आदत ही हमें अपने शरीर में होने वाले लगातार बदलावों पर ध्यान देना है। परेशानी लंबे समय तक बनी रहे साथियों तो हमें उसमें देर नहीं करनी और डॉक्टर के पास जाकर दिखाना है। बिना सलाह के हमें दवाई नहीं लेनी है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि डॉक्टर से अपनी परेशानी पूरी और सही जानकारी के साथ हमें बतानी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, अगर श्रोता साथियों को इन सारी चीजों में झिझक होती है तो कुछ छोटे तरीके वो अपना सकते हैं, जैसे कि अपनी परेशानी को छिपाने के बजाय परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, लक्षणों को लिख कर रखें ताकि स्वास्थ्य कर्मी को सही जानकारी दे सके, स्वास्थ्य केंद्र में कुछ समझ में न आए तो सवाल जरूर पूछें और बिना चिकित्सीय सलाह के किसी भी दवा को न लें, नियमित जांच की जरूरत हो तो उसे टाले नहीं। स्वास्थ्य केंद्र जाना बीमारी का डर नहीं बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी भी समझें, क्योंकि श्रोता साथियों स्वास्थ्य हमारे जीवन की ऐसी पूंजी है जिसकी कीमत अक्सर हमें तब समझ आती है जब कोई परेशानी सामने खड़ी होती है, लेकिन समझदारी यह है मनीषा कि परेशानी को बढ़ाने का इंतजार न किया जाए। स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक कई कारणों से हो सकती है, डर, शर्म, खर्च की चिंता, समय की कमी, पुराने अनुभव या सोच की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें धीरे धीरे सोच को बदलना होगा। याद रखिए कि बीमारी को छिपाना हिम्मत नहीं, समस्या को पहचानना हिम्मत है।
1: बिल्कुल,
0: स्वास्थ्य केंद्र जाना कमजोरी नहीं, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, जब शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनसुना ना करें। समय पर चिकित्सीय सलाह लें, सही जानकारी लें और अपने स्वास्थ्य के बारे में फैसला समझदारी से करें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार, अपने गांव और अपने समुदाय के लिए मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, किसी भी प्रकार की कोई झिझक न करें और समय रहते अपने शारीरिक संकेतों को पहचान कर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। बागड़ रेडियो एवं बागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां श्रोता साथियों, जिंदगी के भाग दौड़ में हम हर दिन किसी न किसी के साथ जुड़े रहते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी और समाज। दूसरों के लिए समय निकालना जरूरी है, लेकिन क्या हमने कभी अपने लिए भी कभी थोड़ा समय निकाला है? जी हाँ, अकेले कुछ पल बैठना हमेशा उदासी या अकेलेपन की निशानी नहीं होती है। कई बार यही शांत समय हमें खुद को समझने, अपने विचारों को व्यवस्थित करने और यह जानने का मौका देता है कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। आज का हमारा विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या अकेले समय बिताना भी जिंदगी की एक सूरत है। जी हाँ दोस्तों, भीड़ में चलना जरूरी है, लेकिन कभी कभी खुद से मिलने के लिए अकेले चलना भी जरूरी है। तो आइए आज कुछ पल दूसरों की नहीं अपने मन की आवाज सुनने के बारे में हम बात करें। बातें ढेर सारी मैं कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य करूंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अकेले समय बिताना भी जिंदगी की एक सूरत है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि अकेले समय बिताने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति समाज या लोगों से दूर होना चाहता है। कभी कभी इंसान लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने विचारों को समझने के लिए शांत समय चाहता है। अकेलेपन में व्यक्ति को खालीपन महसूस हो सकता है, जबकि अपने लिए समय निकालने में व्यक्ति खुद को बेहतर समझ सकता है। इसलिए अकेले बिताया गया हर पल नकारात्मक नहीं होता है। बहुत से बार हम देखते हैं कि हम दूसरों की पसंद, नापसंद, जरूरतों और उम्मीद पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जब कुछ समय अपने साथ बिताते हैं तो खुद से सवाल कर पाते हैं कि क्या मुझे वास्तव में खुशी किसी चीज से मिलती है? मैं अपने जीवन में क्या बदलना चाहता हूँ? मेरे सपने क्या हैं? मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? इन सवालों के जवाब हमें अपने जीवन के फैसले को समझने में मदद कर सकते हैं। इसलिए लगातार काम, मोबाइल, सोशल मीडिया, बातचीत और जिम्मेदारियों के बीच हमारा दिमाग हम देखते हैं कि लगातार सक्रिय रहता है। ऐसे में कुछ समय शांत बैठना मानसिक रूप से विराम देने जैसा हो सकता है। इसके लिए हमें सुबह थोड़ी देर टहलना होगा, किताबें पढ़नी होगी, संगीत सुनना होगा, डायरी लिखना या बस शांत बैठना। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पल हैं श्रोता साथियों, जो व्यक्ति को अपने विचारों को व्यवस्थित करने का अवसर देते हैं। जी हाँ, सपनों की उड़ान तभी संभव है जब हमें यह पता हो कि उड़ान किस दिशा में है। जब हम अकेले बैठ के सोचते हैं दोस्तों, तो हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई की योजना बना सकता है, युवा अपने करियर के बारे में सोच सकता है और कोई भी व्यक्ति अपने अधूरे सपनों के लिए अलग कदम तय कर सकता है। क्योंकि बहुत से बार हम देखते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक कई इतने काम करते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है, और बहुत सी बार उन सारे कामों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा जो सपना है, हमारा जो लक्ष्य है, वो कहीं गुम सा हो जाता है। इसलिए पूरे दिन में कम से कम हमें 15 मिनट अकेले शांत बैठना है और सोचना है कि वाकई में जो जीवन हम जी रहे हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वाकई में हम उसमें आगे बढ़ना चाहते थे। जी हाँ, कई बार हमें लगता है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन हर पल किसी काम में लगे रहना भी जरूरी नहीं है। कुछ समय बिना किसी खास काम के बिताना हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। आराम भी जीवन का हिस्सा है और खुद को समय देना भी। इसलिए हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं है। हमें हर समय कुछ ऐसी चीजें करने के बारे में सोचना है जिससे हमें पता चले कि वाकई में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं

वो छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर श्रोता साथियों यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपया से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस लिए हमें हमारे जीवन में अकेले समय बिताने की जरूरत होती है और ये जरूरत जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि ढेर सारी बातों को जाना, यही अब बात आती है कि अकेले समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अकेले समय को मोबाइल पर घंटों बिताने के बजाय अपने विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

है। आप चाहें तो अपनी पसंद की किताब पढ़ें, दिन भर की बातें डायरी में लिखें, जैसा कि मैंने गीत से पहले भी कहा। इसी के साथ अपने अगले दिन की योजना बनाएं, किसी नए कौशल को सीखने के लिए अपने आप को जागरूक करें, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएं, अपने लक्ष्य और उपलब्धियों पर विचार करें। छोटा सा समय भी तब महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम खुद से जुड़ते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरे हमें समझे, हमारी तारीफ करें, हमारे साथ रहें, लेकिन जीवन में एक ऐसा रिश्ता भी जरूरी है जिसमें हम खुद को समझना सीखते हैं। जब व्यक्ति अपने साथ समय बिताने में सहज होता है तो वह हर समय दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सोच और प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसलिए दोस्तों, एक छोटी सी बात याद रखिए कि अपने साथ बिताया समय खुद को खोने का नहीं, खुद को पाने का समय हो सकता है। इसलिए आज की बातचीत हमें इतना जरूर समझा सकती है कि जीवन में रिश्ते, दोस्ती, परिवार जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है कभी कभी अपने लिए समय निकालना। अकेले बैठकर अपने बारे में सोचना, अपनी गलतियों को समझना, अपनी खूबियों को पहचानना और अपने सपनों की दिशा तय करना, ये सब हमें जीवन को थोड़ा बेहतर ढंग से देखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए समय निकालने और खुद को सबसे दूर कर लेने में फर्क है। अगर कोई व्यक्ति लगातार लोगों से दूर रहने लगे, हर गतिविधि से रुचि खत्म हो जाए या अकेलापन उसे परेशान करने लगे, तो ऐसे समय में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का उद्देश्य लोगों से दूर होना नहीं बल्कि लोगों के बीच रहते हुए खुद से भी अपना रिश्ता मजबूत करना है। इसलिए दोस्तों, दुनिया को समय देते देते खुद को मत भूलिए, क्योंकि आपके सपनों की उड़ान की शुरुआत भी आपसे ही होती है। इसलिए हमें हमारे जीवन में खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ पाए कि हम जीवन में सही दिशा में तो चल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में हमें किसी बड़े बदलाव के लिए बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से शुरुआत करनी पड़ती है। इसके लिए खुद के साथ बिताए गए कुछ शांत पल बहुत मायने रखते हैं। जब आसपास की आवाजें श्रोता साथियों थोड़ी कम होती है, तब हम अपनी इच्छाओं, प्राथमिकताओं और उन बातों को सुन पाते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की व्यस्तता में नजरअंदाज कर देते हैं। अपने साथ समय बिताना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल दूसरों की उम्मीदों के अनुसार तो नहीं जी रहे। अपने फैसलों पर विचार करने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है और जीवन की दिशा को लेकर स्पष्टता आ सकती है, और यही स्पष्टता आगे चलकर हमारे छोटे छोटे प्रयासों को किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ती है। इसलिए दिन भर की जिम्मेदारी के बीच अपने लिए कुछ पल बचाकर रखना स्वार्थ नहीं बल्कि खुद की जिंदगी को समझने की एक स्वस्थ आदत हो सकती है। जरूरी नहीं कि इसके लिए घंटों निकालें। कभी 10 मिनट की शांत से कुछ पन्ने लिखना या बिना किसी शोर के बैठना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि खुद को समझने वाला इंसान ही अपने सपनों को सही मायनों में पहचानता है, फिर उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा पाता है। इसलिए दोस्तों, हर दिन दुनिया से जुड़िए, लेकिन कुछ पल खुद से जुड़ना भी मत भूलिए, क्योंकि आपकी सबसे महत्वपूर्ण बातचीत कभी कभी आपके अपने सपनों से होती है। तो आशा करती हूँ श्रोता साथियों कि आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में कि क्या अकेले समय बिताना भी जिंदगी की जरूरत है, उसको लेकर जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, वासवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुकी जाएंगा। खेतर, बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मोटा अनाज, मोटा अनाज
4: क्या है भाई? ये मोटा अनाज
5: बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
6: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
4: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुनिए सुनिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, लोक अदालत में लंबित न्यायालय एवं प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह समझौते के माध्यम से शीघ्र एवं सरल निस्तारण कराया जा सकता है। जी बिल्कुल, लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण पर समय एवं धन की बचत होती है तथा पक्षकारों को त्वरित न्याय प्राप्त होता है। आइए अपने विवादों का समाधान लोक अदालत में पाएं। अधिक जानकारी एवं निःशुल्क विधिक सहायता हेतु आप अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वागुड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM जी। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायु सेवा से सीख को लेकर।
0: जी
1: जानेंगे कि वायु सेवा से सीख लेकर हम अनुशासन, समय की पाबंदी और टीम वर्क को हमारे जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं और ये हमारे जीवन में जरूरी क्यों है।
0: बिल्कुल,
1: इस विषय को लेकर मनीषा ढेर सारी बातें हम कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं वायुसेना से सीख को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जानेंगे श्रोता साथियों कि अनुशासन, समय की पाबंदी और टीम वर्क हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है।
1: जी हाँ
0: मनीषा, आप देखते हैं कि आसमान में ऊंची उड़ान भरता हुआ विमान जब भी हमें दिखाई देता है तो हमारे मन में क्या आता है, रोमांच और गर्व की भावना पैदा होती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वहीं किसी विमान की उड़ान केवल मशीन, ईंधन और तकनीक के सारे सफल नहीं होती। इसके पीछे अनेक लोगों की मेहनत, जिम्मेदारी, अनुशासन, समय की पाबंदी और आपसी सहयोग छिपा हुआ होता है।
1: बिल्कुल,
0: विशेष रूप से वायुसेना को अगर देखें तो वहां हर काम निश्चित नियमों, जिम्मेदारियों और आपसी तालमेल के साथ किया जाता है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, इसी कारण की वजह से वायुसेना हमें जीवन जीने की कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब हमें दिखाई देता है तो वह केवल एक यात्रा का साधन नहीं लगता, बल्कि अपने बहुत सारे सीख भी लेकर आता है।
0: बिल्कुल,
1: एक हवाई जहाज का सुरक्षित उड़ान भरना और यात्रियों को सही स्थान पर पहुँचाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। इसके पीछे पायलट, सह पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तकनीकी कर्मचारी और जमीन पर काम करने वाली पूरी टीम होती है।
0: बिल्कुल,
1: वायुसेना की व्यवस्था श्रोता साथियों हमें तीन महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अनुशासन, समय की पाबंदी, टीम वर्क, ये तीनों बातें केवल हवाई यात्रा तक सीमित नहीं है कशिश, बल्कि श्रोता साथियों ये हमारे जीवन में भी हम इन बातों को शामिल कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो श्रोता साथियों अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समय की कद्र करना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना हमारी समस्याओं को आसान बना सकता है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। यही अगर बात करें तो हम जैसा कि जानते हैं कि वायुसेना जो होती है वो हमारे देश के लिए कह सकते हैं कि अपनी कई ऐसी चीजों का कुर्बान कर देती है।
1: जी हाँ,
0: और कहा भी गया है श्रोता साथियों कि विमान का उड़ना केवल पायलट की जिम्मेदारी नहीं है, इसके पीछे पायलट, सह पायलट, तकनीकी कर्मचारी, ग्राउंड स्टाफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े लोग और अनेक अन्य ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं।
1: जी हाँ,
0: हर व्यक्ति का काम अलग होता है मनीषा, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक ही होता है।
1: बिल्कुल,
0: सुरक्षित और सफल उड़ान भरना। दोस्तों, यहीं से हमें वायुसेना और विमानन व्यवस्था से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीख होती है, अनुशासन, समय की पाबंदी और टीम वर्क।
1: जी बिल्कुल
0: मनीषा, ये तीनों गुण ही केवल वायुसेना में ही जरूरी नहीं होते। अगर हम अपने जीवन को सफल, व्यवस्थित और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन तीनों गुणों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा हमें बनाना होता है। अगर सबसे पहले हम अनुशासन की बात करें तो अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है साथियों, अनुशासन का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने समय का सही उपयोग करना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना और साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना।
1: बिल्कुल
0: मनीषा, वायुसेना में अनुशासन का विशेष महत्व है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम और जिम्मेदारी की स्पष्ट जानकारी होती है। प्रशिक्षण लेकर भी कार्य करने तक हर कदम पर नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा क्यों श्रोता साथियों, क्योंकि वहाँ छोटी सी लापरवाही भी गंभीर परिणाम दे सकती है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अनुशासन केवल सेना या वायुसेना में काम करने वाले लोगों के लिए ही जरूरी है। अनुशासन तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ बात करें कि अनुशासन और आत्मनिर्भरता की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि अनुशासित व्यक्ति धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता है। वह अपने कार्यों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उन्हें स्वयं पूरा करने का प्रयास करता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि वायुसेना का सैनिक अपने कर्तव्यों के प्रति स्वयं जिम्मेदार होता है, उसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रशिक्षण और निर्णय लेने की क्षमता पर विश्वास रखना पड़ता है। इसी प्रकार श्रोता साथियों जीवन में भी हमें समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखना है। अनुशासन व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। जब हम अपने छोटे छोटे लक्ष्य नियमित रूप से पूरे करते हैं साथियों, तो हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है कशिश। यही विश्वास श्रोता साथियों कह सकते हैं कि भविष्य में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया कि अनुशासन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: अगर बात करें तो एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन का मतलब होता है नियमित पढ़ाई करना, समय पर स्कूल जाना, अपना गृह कार्य पूरा करना और परीक्षा के समय ही पढ़ाई शुरू करने के बजाय पूरे साल मेहनत करना।
1: जी हाँ,
0: वहीं एक कर्मचारी के लिए अनुशासन का मतलब है समय पर काम पर पहुंचना, अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करना और संस्था के नियमों का पालन करना।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर किसान की बात करें तो एक किसान के लिए भी अनुशासन बहुत जरूरी होता है, जैसे कि खेत की तैयारी, बुवाई, सिंचाई और फसल की देखभाल, हर काम समय के अनुसार करना पड़ता है। मनीषा,
1: बिल्कुल।
0: एक गृहिणी की बात करें तो गृहिणी जो होती है वो परिवार संभालने वाले व्यक्ति के जीवन में भी अनुशासन का महत्व होता है, जैसे कि घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, परिवार के सदस्यों की जरूरतें और स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए व्यवस्थित दिनचर्या जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि अनुशासन किसी एक पेशे की पहचान नहीं बल्कि अच्छे जीवन की पहचान है।
1: बिल्कुल कशिश, यही अगर बात करें कि समय की पाबंदी के महत्व की, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि समय ही वो अमूल्य है। यह बात हमें बचपन से ही सुनने को मिलती है। समय एक ऐसी संपत्ति है जिसे न खरीदा जा सकता है और न ही वापस पाया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: धन खोने के बाद उसे दोबारा कमाया जा सकता है साथियों, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि आप हम श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं वायुसेना से सीख को लेकर, साथ ही अनुशासन, साहस और कह सकते हैं कि धैर्य जैसे गुणों को लेकर भी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व रखते हैं, तो ये बातें हम आगे ही करते रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विशेष तो रूबरू कराई चुके थे कि आज हम बात करने वाले हैं वायुसेना से सीख, अनुशासन, समय की पाबंदी और टीम वर्क हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इस विषय को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि वायुसेना में सभी समय की पाबंदी बहुत महत्व रखती है। सैन्य अभियानों में समय का प्रत्येक क्षण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी विमान का उड़ान भरना, किसी स्थान पर पहुंचाना, किसी आदेश का पालन करना या किसी अभियान को पूरा करना, हर काम श्रोता साथियों निश्चित समय के अनुसार किया जाता है। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य में अनावश्यक देरी हो जाए कशिश, तो हम देखते हैं कि उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि वायुसेना के जवानों को समय का मूल्य पता होता है, उन्हें प्रत्येक कार्य समय पर करने की आदत विकसित की जाती है।
1: जी हाँ, जैसे कि अगर बात करें कि अनुशासन हमें क्या सिखाता है, तो सबसे पहले श्रोता साथियों अनुशासन हमें जिम्मेदारी सिखाता है। जब हम कोई जिम्मेदारी को लेते हैं मनीषा, तो उसे पूरा करना भी हमारा कर्तव्य होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक विद्यार्थी ने यह तय किया है कि वह रोज 2 घंटे पढ़ाई करेगा।
0: जी,
1: पहले दिन उसने पढ़ाई की, दूसरे दिन भी की, लेकिन तीसरे दिन उसने कहा कि आज मन नहीं है, कल से पढ़ लूंगा। अगर यही बात श्रोता साथियों रोज रोज होने लगे तो उसका लक्ष्य पीछे छूट जाएगा।
0: जी हाँ,
1: इसके विपरीत यदि वह अपने मन को समझा कर रोज थोड़ा पढ़ता रहे तो कुछ महीनों में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। यही श्रोता साथियों अनुशासन की ताकत है। अनुशासन हमें सिखाता है कि मन करे या ना करे, लेकिन जो काम हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी है उसे करना ही है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी के जीवन में सभी की पाबंदी है वो बहुत जरूरी होती है। विद्यार्थी को पढ़ाई, खेल, आराम, भोजन और मनोरंजन के लिए उचित समय का निर्धारण करना होता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि विद्यार्थी रोज कुछ घंटे नियमित रूप से पढ़ाई करता है तो उसे परीक्षा के समय अत्यधिक दबाव का महसूस नहीं होता है। इसके विपरीत श्रोता साथियों यदि वह पूरे वर्ष पढ़ाई को टालता रहता है और परीक्षा के कुछ दिन पहले तैयारी शुरू करता है, तो कोशिश हम देखते हैं कि तनाव और चिंता है वो बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल,
0: समय सारणी बनाकर काम करने से विद्यार्थी अपने जीवन में समय का बेहतर उपयोग कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: उदाहरण के लिए श्रोता साथियों वो सुबह पढ़ाई करता है, दिन में विद्यालय जाता है, शाम को खेल खेलता है और रात में पुनरावृत्ति के समय को निर्धारित करता है, तो कोशिश हम देखते हैं कि उसके जीवन में संतुलन बना रहता है।
1: जी हाँ,
0: समय की पाबंदी श्रोता साथियों केवल पढ़ाई करने तक सीमित नहीं है। विद्यालय समय पर पहुंचना, परीक्षा में समय का सही उपयोग करना, परिजनों के साथ समय को बांट कर रखना और निर्धारित समय पर काम पूरा करना, ये सारी समय की पाबंदी के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। साथी अगर बात करें तो समय की पाबंदी दूसरों का सम्मान भी है। साथियों जब हम किसी बैठक, कार्यक्रम, कक्षा या कार्यालय में समय पर पहुंचते हैं तो हम केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे होते बल्कि दूसरे लोगों के समय का सम्मान भी कर रहे होते हैं।
0: जी हाँ,
1: समय पर पहुंचने वाला व्यक्ति मनीषा धीरे धीरे लोगों का विश्वास हासिल करता है। लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति अपनी बात और जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है।

0: समय की पाबंदी से हमारे व्यक्तित्व में जिम्मेदारी, विश्वसनीयता और आत्मविश्वास जैसे गुण भी विकसित होते हैं। अगर बात करें कि वायुसेना में टीम वर्क की सीख का क्या मतलब है, तो वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है साथियों टीम वर्क।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि किसी भी अभियान या कार्य की सफलता केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। पायलट, तकनीकी विशेषज्ञ, ग्राउंड स्टाफ, संचार से जुड़े कर्मचारी और अन्य अनेक लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। हर व्यक्ति का काम अलग हो सकता है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक होता है और यही है टीम वर्क, यानी कि अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना। हमारे जिंदगी में भी श्रोता साथियों टीम वर्क की यही भावना बहुत जरूरी होती है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज तेज गति वाली दुनिया में समय का प्रबंधन हमारे लिए और भी बढ़ जाता है। लोगों के पास काम, पढ़ाई, परिवार और व्यक्तिगत विकास के लिए सीमित समय होता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तो बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अधूरे रह सकते हैं। वायुसेना से हमें यह सीख मिलती है साथियों कि हर कार्य की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। कौन सा कार्य हमें कब करना है, कौन से काम के बाद दूसरा कार्य हमें कौन सा करना है, ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के युवाओं के लिए यह सीख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मोबाइल, इंटरनेट का सही उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने किया जा सकता है साथियों, लेकिन कशिश हम श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि अत्यधिक समय वो सोशल मीडिया और मनोरंजन में ना बिताएं। अपने महत्वपूर्ण कार्य है वो करें जो वो जिंदगी में करना चाहते हैं वो करें, और कुछ ऐसे काम है जो हम परिवार के लिए कर सकते हैं उनके लिए हमें समय को निर्धारित करके रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। साथ ही अगर बात करें तो आज के समय में लोग अपने अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हैं कि कई बार सहयोग की भावना कम होती जा रही है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन श्रोता साथियों कोई भी व्यक्ति हर काम अकेले नहीं कर सकता, परिवार में भी सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी होता है। स्कूल में विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर सीखने का वातावरण बनाते हैं।
1: जी हाँ,
0: कार्यालय में अलग अलग विभाग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी सामाजिक अभियान की सफलता के लिए कई लोगों की भागीदारी जरूरी होती है। यानी कि टीम वर्क हमें ये समझाता है कि हमारी सफलता केवल हमारे व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं होती, कई बार दूसरों का सहयोग भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज लगभग हर क्षेत्र में टीम वर्क की आवश्यकता होती है। किसी कंपनी में एक उत्पाद को तैयार करने के लिए इंजीनियर, डिजाइनर, प्रबंधन, तकनीकी कर्मचारी और जो अन्य विशेषज्ञ होते हैं उन सब में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन जो होते हैं वो और अन्य कर्मचारी ही वो मिलकर मरीज की देखभाल करते हैं। किसी बड़े निर्माण में कार्य में हम देखते हैं कशिश के इंजीनियर और वस्तुकार और जो मजदूर होते हैं वो सारे लोग मिलकर काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों आधुनिक जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा नहीं है बल्कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता भी हमें निर्धारित करनी होती है।
0: जी हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि श्रोता साथियों टीम वर्क तभी सफल होता है जब टीम के सदस्यों के बीच विश्वास हो। यदि एक व्यक्ति को दूसरे पर भरोसा ही नहीं है तो काम में तालमेल बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: और अगर इसके विपरीत देखें तो जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हैं तो इससे टीम को मजबूती मिलती है।
1: जी हाँ
0: साथियों, हमें भी अपने जीवन में दूसरों की बात सुनना, उनके सुझावों का सम्मान करना और आवश्यकता पड़ने पर मदद करना सीखना चाहिए। साथ ही हमें अपनी जिम्मेदारी किसी और पर टालने की आदत नहीं बनानी चाहिए। टीम में सहयोग लेने के साथ साथ अपना योगदान देना भी बहुत जरूरी होता है। मनीषा, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं और आज का जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण भी है।
1: जी हाँ,
0: तो इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें और भी हैं जो आगे ऐसे ही हमारी बनी रहेंगी हमारे साथियों के साथ, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों, बहुत अच्छी बातें हमारी आपसे चल रही थी वायुसेना दिवस को लेकर, और हम जान रहे थे कि किस प्रकार से अनुशासन, टीम वर्क जैसे जो गुण होते हैं वो हमारे जीवन में काफी महत्व रखते हैं।
1: जी हाँ,
0: गीत से पहले हमने मनीषा टीम वर्क और अनुशासन के बारे में तो जाना ही था। यही अगर बात करें तो टीम वर्क में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: जैसे कि किसी टीम में कुछ लोग सामने दिखाई देते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का योगदान कम है। श्रोता साथियों, वायुसेना की कार्य प्रणाली हमें बताती है कि सफलता के पीछे अनेक लोगों का योगदान होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: हमारे जीवन में भी हमें हर व्यक्ति के योगदान का सम्मान करना चाहिए। घर में खाना बनाने वाला व्यक्ति हो या घर की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने वाला सदस्य, कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी हो या सहयोगी कर्मचारी, हर व्यक्ति की भूमिका अपने हिसाब से और अपने स्तर पर काफी महत्वपूर्ण होती है।
1: जी हाँ।
0: जब हम दूसरों के योगदान को सम्मान देते हैं तो टीम में सकारात्मक माहौल बनता है। मनीषा
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि अनुशासन, समय की पाबंदी, टीम वर्क का अलग अलग गुण हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनुशासित है तो वह समय की पाबंदी के महत्व को समझता है। यदि वह समय का सम्मान करता है तो वह अपनी टीम और दूसरे सदस्यों का सम्मान करना भी जानता है। इसी प्रकार श्रोता साथियों, यदि सभी टीम के सदस्य अनुशासित, समय के पाबंद और दूसरी टीम के प्रति प्रभावी है, तो हम देखते हैं कि कशिश ये सारे गुण उनमें होते हैं। वायुसेना इसका उत्कृष्ट उदाहरण है श्रोता साथियों। वहाँ किसी भी अभियान की सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कार्य पर समय को सही तरीके से करना होता है। एक व्यक्ति की लापरवाही दूसरे व्यक्ति के काम को प्रभावित कर सकती है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि व्यक्तिगत अनुशासन सामूहिक सफलता का आधार भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों, तो आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम टीम वर्क के बारे में तो जान पाए, यहीं अगर कठिन समय में टीम वर्क की असली परीक्षा कैसे होती है इसको लेकर बात करें, तो अच्छे समय में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन असली टीम वर्क की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है। मनीषा
1: जी हाँ,
0: जब कोई समस्या आती है तब हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। परिवार में आर्थिक परेशानी हो तो परिवार के सदस्य मिलकर समाधान खोज सकते हैं। किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में कठिनाई हो तो उसके मित्र और शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कार्यस्थल पर भी हम कह सकते हैं कि हम अपनी टीम की मदद कर सकते हैं, अपनी टीम का सहयोग कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर बात करें असफलता की, तो जीवन में हर प्रयास सफल हो ये जरूरी नहीं होता।
1: जी हाँ,
0: कभी कभी हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में साथियों, हमें खुद को दोष देने या हार मानने के बजाय अपनी गलतियों को समझना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। कभी परीक्षा का तनाव होता है, कभी आर्थिक समस्याएं होती हैं, कभी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है, तो कभी व्यक्तिगत असफलताएं होती हैं। कठिन परिस्थितियों में श्रोता साथियों, व्यक्ति की वास्तविक क्षमता सामने आती है। वायुसेना के जवान कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना सीखते हैं। उनका प्रशिक्षण उन्हें संकट के समय घबराने की बजाय स्थिति का आकलन करने और उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। हमें श्रोता साथियों, अपने जीवन में उन गुणों को विकसित करते हुए यदि हम अनुशासित रहेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों का सहयोग ले, तो साथियों हम देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों का सामना करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि एक राष्ट्र को केवल उसकी सरकार या सेना महान नहीं बनाती है। राष्ट्र की प्रगति है वो उसके नागरिकों के चरित्र, मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी पर निर्भर करती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि विद्यार्थी

0: परिस्थिति आती है, परीक्षा में असफलता, नौकरी में परेशानी, पारिवारिक समस्या, किसी लक्ष्य को पाने में देरी, इन सभी परिस्थितियों में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए साथियों।
1: जी हाँ,
0: अनुशासन हमें परिस्थितियों के बावजूद अपने काम पर टिके रहने की ताकत देता है, तो समय की पाबंदी हमें अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित रखने की मदद करती है।
1: बिल्कुल।
0: और वही टीम वर्क हमें विश्वास देता है कि कठिन समय में अकेले हम नहीं होते हैं। मनीषा, आज के युवा अनेक अवसरों के बीच जी रहे हैं, उनके पास शिक्षा है, तकनीक है और जानकारी के ढेर सारे साधन भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इन अवसरों का सही उपयोग तभी हो सकता है जब युवाओं में अनुशासन और जिम्मेदारी दोनों हो। युवाओं को अपने दिन का सही प्रबंधन करना चाहिए, सोशल मीडिया और मोबाइल का उपयोग जरूरत के अनुसार करना चाहिए, पढ़ाई, नौकरी, कौशल विकास, स्वास्थ्य और आराम के लिए संतुलित समय निर्धारित करना चाहिए, और इसके साथ साथ ही युवाओं को टीम में काम करना भी सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, भविष्य में चाहे वे किसी भी कंपनी में काम करें, अपना व्यवसाय शुरू करें या सामाजिक क्षेत्र में योगदान दें, हर जगह टीम वर्क की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि वायुसेना का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश है कि महान उपलब्धियां हैं वो अचानक प्राप्त नहीं होती हैं। उनके लिए श्रोता साथियों वर्षों का प्रशिक्षण, अभ्यास और त्याग और अनुशासन होता है। एक पायलट को विमान उड़ाने की दक्ष रिपीट एक पायलट को विमान उड़ाने में दक्ष बनने के लिए समय लगता है, प्रशिक्षण लेने पड़ते हैं और कई बार अभ्यास करने पड़ते हैं।
0: हाँ।
1: इन सबसे श्रोता साथियों हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में अनुशासन का अपनाना है, समय के लिए पाबंद रहना है और आने वाली सफलताओं के लिए हमें मेहनत करनी है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें ढेर सारी कर रहे हैं, आगे भी ये बातें कुछ हैं महत्वपूर्ण जो रहेंगी, लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे वायुसेना से सीख, अनुशासन, समय की पाबंदी और टीम वर्क हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है इसे लेकर।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर कशिश बात करी कि समय की पाबंदी से व्यक्तिगत निर्माण की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति दूसरों का भी सम्मान करना सीखता है। जब हम किसी से मिलने का समय निर्धारित करते हैं और उस समय पर पहुंचते हैं, तो इससे हम देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को भी यह संदेश मिलता है कि हम उसके समय को महत्व देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: समय की पाबंदी व्यक्ति को विश्वसनीय बनाती है। शिक्षक ऐसे विद्यार्थी बनाते हैं जो समय का पाबंद कर पाते हैं। साथ ही साथियों, हम देखते हैं टीम वर्क हमें यह समझाता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है।
1: बिल्कुल,
0: और किसी भी बड़ी सफलता के लिए टीम का जरूरी होना बहुत जरूरी होता है। वायुसेना में पायलट जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही श्रोता साथियों तकनीकी कर्मचारी, ग्राउंड स्टाफ, अन्य सहयोगी होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। इससे साथियों हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के साथ मिलकर हमें उनका सम्मान करके काम करना ही टीम वर्क होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, साथ ही अगर नेतृत्व की भावना की बात करें कि नेतृत्व की भावना किस प्रकार से विकसित होती है, तो हमारे दोस्तों से हम कहना चाहेंगे कि अनुशासन और टीम वर्क से नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होती है। साथियों, एक अच्छा नेता केवल आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह अपनी टीम की बात सुनता है, जिम्मेदारी लेता है, कठिन समय में टीम के साथ खड़ा रहता है और सभी को लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वायुसेना की कार्य संस्कृति से श्रोता साथियों हमारे युवा ढेर सारे सीख ले सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि नेतृत्व का अर्थ केवल आगे रहना नहीं है, नेतृत्व का मतलब है जिम्मेदारी लेना और दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, हम देखते हैं कि ये जो तीन गुण है, अनुशासन, समय पाबंदी और टीम वर्क, इन्हें अपनाने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है।
0: जी हाँ,
1: शुरुआत छोटी आदतों से भी की जा सकती है, जैसे कि सुबह उठने और सोने का समय निश्चित हम करें, दिन के जरूरी कामों की सूची बनाएं, महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें, काम को अनावश्यक रूप से टालने से बचें, समय पर स्कूल, कॉलेज या फिर कार्यालय पहुंचे, दूसरों के समय का सम्मान करें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने, जरूरत पड़ने पर सहयोग करें और सहयोग लेने से भी संकोच न करें, अपनी गलती स्वीकार करें साथियों, उससे सीखने की कोशिश करें। और कह सकते हैं कि अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो धीरे धीरे ये छोटी आदतें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकती हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज तकनीकी ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे साधनों ने हमारे ज्ञान और संचार के नए रास्ते खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों तकनीकी के बढ़ते उपयोग के साथ अनुशासन और समय प्रबंधन की आवश्यकता है वो भी बढ़ गई है। यदि हम मोबाइल का उपयोग पढ़ाई, ज्ञान और रचनात्मक कार्यों के लिए करी तो मोबाइल हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन श्रोता साथियों यदि हम बिना उद्देश्य के घंटों तक सोशल मीडिया वीडियो देखते रहे, तो इससे कशिश हम देखते हैं कि हमारा समय ही वो नष्ट हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों आधुनिक जीवन में वायुसेना से मिलने वाली अनुशासन, समय पाबंदी की सीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आसमान में उड़ान भरने के लिए विमान को केवल पंखों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही दिशा, नियंत्रण और तालमेल की भी जरूरत होती है। ठीक उसी तरह श्रोता साथियों जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, हमें अनुशासित रहना होगा, समय का सम्मान करना होगा और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि अनुशासन हमें मजबूत बनाता है, समय की पाबंदी हमें जिम्मेदार बनाती है और टीम वर्क हमें साथ लेकर आगे बढ़ना सिखाती है साथियों। और इन तीनों गुणों के साथ जीवन की हर उड़ान को नई ऊंचाई दी जा सकती है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, बागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट, कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।
0: साथ ही श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते ही कार्यक्रम की अंतिम गीत के साथ में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप पर SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपके फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत UP से। फिल्म का नाम है नो टाइम फॉर लव। गीत के बोल ही जान मेरी जा रही है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना जी कुम्भार। पुनावली से जुड़ना चाह रही हैं अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी, शायशा जी सोनवनी। इस गीत के अनुरोध करता है डापकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। पलारी से जुड़ रहे हैं नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल ही जान मेरी जा रही है सनम। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अनुराधा जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है तेजाब, गीत के बोल ही कह दो कि तुम मेरी हो वरना। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा गोरके जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, खडवासी अब्दुल गफार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी। इस गीत के अनुरोध करता है मस्तानपुरा सी अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से शमशिल कमर राही, साहिन फातिमा, अजनान खान, फैजाद खान, अनुजी खान। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही कह दो कि तुम मेरी हो वरना। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है केदारनाथ पुषत से। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। गीत के बोल ही दिल मेरे तू दीवाना है। इस गीत की फरमाइश करता है रानी मनकर, राम मनकर, सुरभि मनकर, केदार जी मनकर। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। सलार पलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं बीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहीजी मलिक। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही दिल मेरे तू दीवाना है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से। फिल्म का नाम है धुंध, गीत के बोल हैं संसार की हर शे का इतना ही फसाना है। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जाकोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से बाबा साहेब कणककर, साखरबाई कणककर, परमेश्वर रोहिणी, श्रावणेश्वरी और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। कुम्हार गली कोलगांव से जुड़ रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुम्हार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते ही फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही संसार के हर शेखा बस इतना सा फसाना है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए साथियों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, गीत के बोल ही पास हो आने लगे जरा जरा। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या जी गोस्वामी और अनुराधा जी गोस्वामी। इसी बीच जुड़नाचार्य हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है कुंडी सेंटर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी हिमांशु बोई। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही पास वो आने लगे जरा जरा। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है कलयुग, गीत के बोल हैं जिया धड़क धड़क जाए। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इज़ार, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं शिवानी चौक कटनी से अनिल ताम्रेकार, अमर ताम्रेकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रेकार, रंजत रजक जी, सजीव वर्मा, विपिल गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजीव सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोनी, मोना हनी और यंश जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कंजोरिया से डोनक पाभो, छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं प्रभा जयपुरिया, जालधर से जुड़ना चाह रही हैं अशोक जाटव। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहे मेरा जहां जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: मैं वही जहाँ आधा हिंदुस्तान सोता है।

आयुश्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चोरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा सीम। फिल्म का नाम है होली आई रे, गीत की बोल ही मेरी तमन्नाओं की तस्वीर तुम। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर और भी श्रद्धा साथी जुड़ना चाह रहे हैं। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवाजी वर्मा। इस बीच जुड़ना चाह रहे पटिया कला दुर्ग से संजीव कुमार शाहू, सुजीता शाहू, शशंक जी शाहू और सीमा जी शाहू। दादरीगेट भवानी से जुड़ना चाह रहे हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनहाल जी मेहरा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है होली आई रे, गीत के बोल ही मेरी तमन्नाओं की तस्वीर तुम। इस गीत को आवाज दी मुकेश जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने मुकेश जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से।

फिल्म का नाम है मेहूना, गीत के बोल हैं किसका है ये तुमको इंतजार मेहूना। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, गुड्डू झंझोरिया, आरजू झंझोरिया। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिद शेख, नाजिया नाशिद, शाही शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमीद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जी मुजावर और जुमीर जी मुजावर। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं माया देवी, ऋतिक और आदित्य जी कसाना। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मेहूना, गीत के बोल है किसका है ये इंतजार मेहूना। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। श्रोता साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर तो आप सभी जानते ही हैं, हमारा नंबर है जिसके माध्यम से आप अपने राय सुझाव और फरमाइश के गीत हम तक पहुँचाते हैं। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था हमारा आपके साथ में, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो दोस्तों, मैं आप सभी के साथ फिर से जुड़ चुकी हूँ। बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है मैंने भी प्यार किया, गीत के बोल हैं मेरे रंग में रंगने वाली। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयागराज चौधरी, लड्डू देविका चौधरी जी और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। बागपत से जुड़ना चाह रहे जगमोहन सिंह पदापत, मनुष्य देवी, अर्जुन भारती, बिटियांजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधर नूतन, रामनाथ कश्यप जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुश्रीवास, विवेक शिवास, आयुश्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। तो आई श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं मेरे रंग में रंगने वाली। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था मैंने प्यार किया फिल्म का, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूँगी, बोरखेड़ा पित्रामल से। फिल्म का नाम है जिस्म गीत के बोल है आवारापन बंजारापन। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुणत जी सारनपुर से जुड़ रहे हैं।

जोनटी केस रो जी टी केस रो पल्टी केस रो विलेज टी केस रो जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार जी, मलयान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन साहब जी और संयम जैन, मुस्कान जैन, जिवेम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भवेश जैन, अंशिका जैन। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं आवारापन बंजारापन। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता, उस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, सुर गीत के बोल हैं, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आना। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिण दले, ऋषिके दले, जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका सोनवानी, विशाखा सोनवानी जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी। सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे सैयद मसूर, साइना असन, अक्सा अदीब, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, अनोखेलाल वर्मा जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आना। तब तक आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, उस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों साजन। गीत के बोल है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्ही से करता है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, सोगा मंगल कौर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं ये श्रोता साथी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नरवेर महाराष्ट्र से हैं पी एस नवाड़कर, नीमा नवाड़कर, विश्वल नवाकर, सोपान ताइडे जी। लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं बाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामन शेंडे, शिला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं मधुबनी बिहार से हैं एमडी शबीर परवाना जी, साहिद अली, साजिद अली जी, शाहिद अली जी, जाहिद अली जी। पतरोड से हैं विजय अम्बाड़कर, सुनता अम्बाड़कर, ऋषिकेश, राधिका, अक्षय अम्बाड़कर जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्ही से करता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बाजीगर। गीत के बोल हैं, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे इस गीत के साथ में मेरठ से अनिल कुमार गौड़ के, विशानी अलील, प्राजक्ता गौड़ के, वैष्णवी गौड़ के जी। गंज द्वारा से हैं शमजुल कमर राई, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। नाम बताना चाहूँगी, कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से एड नाशिर शेख, नाजर नाशिर, नाजिया नाशिर, शादिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से हैं जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है श्रुता साथियों, गीत के बोल हैं ये वादा रहा, फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामश्री विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजुनू, रजना, प्रियाली, दिव्यांशी और विश्वकर्मा जी, और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। पटियाला से जुड़ना चाह रहे हैं बत्ता परिवार से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं अमरावती से हैं श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे और समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। और भी श्रोता साथी हैं जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी, दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, रेहान अंसारी, लोनी से नस्लिम मूल इस्लाम कुनोरी, प्रकाश वीर राजपूत जी, अनुप्रिया चंद्रवर्षी जी,

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारी बीच आया है चुकुनटी बुलंदशहर से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों आदत, गीता गीत के बोल हैं आदत और फिल्म का नाम है कलयुग। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सिद्दीबासी, निखत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच पुराना तलाट डुमराव से हैं वलीउल्ला अंसारी, अजमा नाज अंसारी, शबनम बानो, बक्सर से एजिराज अंसारी, फातिमा नाज अंसारी, सोनम और डॉक्टर अदीपा जी, बक्सर बिहार से सफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रामेश शाहू, डब्ल्यू अंसारी, सोनम दीपा, दानिश अंसारी, श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य, सलीमपुर बक्सर से एजिराज अंसारी, खातून इकबाल मस्तान जी, गंज उडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाथ, नाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफिदी, राधा नाम देव जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं वसीम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुरिदी श्रोसे, परिधि श्रोसे, मायरा श्रोसे जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं गेटी झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अंजाल, समन नवास, असमनास, बेबू बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी। नवाशहर पंजाब से हैं गंगा दीप तिथाटी, तृप्ता कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम वामिका थांडी और वाणी थांडी जी। येताला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शंकर लाल जयसवाल, गणेश लाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, अरणय जयसवाल, दुर्गाश्री जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जयसवाल। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं आदत, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश आई है फजल का पंजाब से। फिल्म का नाम है दिल तो बच्चा है जी, गीत के बोल हैं अभी कुछ दिनों से। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं सुभाष गुरा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गुदारा जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। नेहरू चौक पैटर्न से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बीबी सिया जाधव। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, निशा नेहा नामदेव और चंद्रलाल श्रीवास जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित्त आहूजा जी। मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। फरुखाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश चौरसिया, सुबोध चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, और हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में भाटापारा छत्तीसगढ़ से। सोहन जोशी, हरविंद्र सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, गीताबाई सेन, रानू अग्रवाल, लक्ष्मी ध्रुव, वेदई जोशी, हंसिका जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी, और जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं अभी कुछ दिनों से। आपको बताना चाहूँगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इस अनुमति के साथ नमस्कार।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागड़ कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज के शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। पूर्वजों की इच्छा आशा महत्वाकांक्षा क्रोध बैर प्रतिशोध यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विश्व का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम ज्ञान संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या मृत्यु रक्तपात क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से नहीं जनते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन के साथ मृत्यु का दान भी देते, प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का हृदय का हो या वास्तविक हो उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। स्वयं विचार कीजिए।
1: मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केरे करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोलो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एक हमरो ने हाथ मन में जावु है फार्म भरो जानकारी लो जमी माता नाम लकड़ वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपना भी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन का कागज माते अपने नाम लकाड़ो
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
2: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो चूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी निमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारते नु खवानो सोड़ो बेशी अनाज तकी नातु जोड़ो
4: मोटो अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी युवा साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है युवा और देश सेवा को लेकर, यानी कि युवा और देश सेवा रक्षा क्षेत्र में करियर की संभावनाएं किस तरह से कर सकते हैं। श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि हर युवा के मन में अपने करियर को लेकर कई सवाल होते हैं।
0: जी
1: मैं क्या बनूं, किस क्षेत्र में जाऊं, कौन सा करियर मेरे लिए सही होगा, क्या मेरा काम समाज और देश के लिए भी उपयोगी हो सकता है। अगर श्रोताओं आपके मन में भी कहीं ये सवाल आया है कि मैं अपने करियर के साथ देश की सेवा कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ, तो रक्षा क्षेत्र आपके लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना का नाम गर्व के साथ सामने आता है। हम देखते हैं कशिश के हर वर्ष 8 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
0: जी हाँ।
1: और ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना और उसके गौरवपूर्ण सफर को याद करने का अवसर है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना युवा साथियों को इस प्यारे से विषय से जुड़ा ही एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: दोस्तों जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं युवा और देश सेवा को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था कि अक्सर हमारे युवा साथियों के मन में यह सवाल आता है कि उन्हें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए और वे अक्सर सोचते रहते हैं कि कौन सा क्षेत्र उनके लिए बेहतर रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में हमारे युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि युवा साथियों, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि करियर ऐसा चुने जिसमें सपनों की उड़ान भी हो और देश के सम्मान की पहचान भी हो।
1: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कशिश कि भारतीय वायुसेना को हम अक्सर आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, वर्दीधारी जवानों के रूप में देखते हैं, लेकिन वायुसेना की भूमिका इससे कहीं व्यापक है।
0: बिल्कुल,
1: इसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत होती है। पायलट, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, संचार विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी और बहुत सारे अन्य कर्मचारी।
0: जी जी,
1: यानी कि श्रोता, रक्षा क्षेत्र में करियर का मतलब केवल हथियार या युद्ध से जुड़ा काम करना नहीं है। इसमें विज्ञान होता है, तकनीक होता है, चिकित्सा, प्रबंधन, संचार, इंजीनियरिंग और नेतृत्व जैसे अनेक क्षेत्र शामिल है।
0: बिल्कुल,
1: आज का युवा तकनीक के साथ बड़ा हो रहा है, उसके पास नई चीजें सीखने की क्षमता भी है, ये हम भी देख रहे हैं कशिश। डिजिटल दुनिया की समझ भी है और नई चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस भी है।
0: जी जी,
1: यही कारण है कि रक्षा क्षेत्र में भी युवाओं के लिए अनेक प्रकार के अवसर मौजूद है। कहा गया है कि वर्दी सिर्फ पहचान नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। देश सेवा से भावना नहीं, अनुशासन और कर्म की पहचान है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अब यही बात करते हैं कि हमारे युवा साथियों के लिए भारतीय वायुसेना का करियर क्यों जरूरी है। तो युवाओं, आपके लिए भारतीय वायुसेना में करियर का आकर्षण केवल एक सम्मानजनक नौकरी तक सीमित नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति को अनुशासन के साथ साथ नेतृत्व, टीम वर्क और जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर मिलता है। वायुसेना में काम करने वाला व्यक्ति जागृति जी अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के साथ एक बड़े उद्देश्य का भी हिस्सा बनता है।
1: जी हाँ,
0: यहाँ युवा साथियों हर काम महत्वपूर्ण होता है। एक विमान को सुरक्षित उड़ान भरने के लिए पायलट के साथ साथ तकनीकी टीम, ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर और अन्य कुछ विशेषज्ञ भी अपनी भूमिका निभाते हैं।
1: जी हाँ,
0: इसलिए जागृति जी, अगर युवा सोचते हैं कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि देश सेवा के कई रास्ते हैं और रक्षा क्षेत्र उनमें से एक महत्वपूर्ण रास्ता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि रक्षा क्षेत्र में जाने के लिए सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होना ही पर्याप्त नहीं है। श्रोताओं, शैक्षणिक योग्यता, मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सीखने की इच्छा भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: भारतीय वायुसेना में अलग अलग प्रवेश मार्ग और भूमिकाएं होती है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया निर्धारित होती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए जो युवा वायुसेना को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनकी शैक्षणिक योग्यता और रुचि किस क्षेत्र से मेल खाती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, कई युवाओं का सपना होता है कि वे आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान उड़ाए, लेकिन पायलट बनना केवल विमान उड़ाने का रोमांच नहीं है। इसके लिए जिम्मेदारी, एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता, शारीरिक और मानसिक तैयारी तथा कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए अगर हमारा सपना पायलट बनने का है श्रोताओं, तो केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, उस सपने के लिए सही दिशा में लगातार तैयारी करना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए कहा गया है कि आसमान छूने का सपना वही साकार करता है जो जमीन पर रहकर मेहनत करना सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बात करें तकनीकी क्षेत्र में युवाओं की भूमिका की, तो आज रक्षा क्षेत्र तेजी से तकनीक आधारित हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: आधुनिक विमान, रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ अन्य तकनीकी प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों की जरूरत होती है। इसलिए जिन युवाओं की रुचि विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या तकनीकी क्षेत्र में है, तो वे रक्षा के क्षेत्र में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, ये युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है कि अगर उन्हें मशीनों और तकनीकों में रुचि है, तो श्रोता साथियों, ये कौशल केवल निजी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, आप इसे देश सेवा से भी जोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें जो चल रही है वो निरंतर ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं के आभाष में। और हमारी बातें चल रही थी भारतीय वायुसेना दिवस को लेकर, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, अगर हमें इस सफर में जाना है तो हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है उस पर हमें जोर देना होगा।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि कशिश, अगर कोई युवा भारतीय वायुसेना या रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले आधिकारिक भर्ती और प्रवेश संबंधी जानकारी देखनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: अलग अलग प्रवेश योजनाओं में पात्रता और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है श्रोताओं, इसलिए सोशल मीडिया पर मिलने वाली अधूरी या गलत जानकारी पर भरोसा करने के बजाय संबंधित आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही युवा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, जिस प्रवेश के लिए जिस विषय और योग्यता की आवश्यकता हो उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी।

0: पहचानने की और उनका सही उपयोग करने की।
1: जी हाँ,
0: इसलिए कहा गया है कि गांव की मिट्टी से उठे कदम भी आसमान तक पहुंच सकते हैं, बस सपनों के साथ सही दिशा और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि देश सेवा का मतलब केवल सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करना ही नहीं होता। एक शिक्षक अच्छे नागरिक तैयार करता है, यह देश सेवा है।
0: जी जी।
1: एक डॉक्टर जरूरतमंदों का इलाज करता है, ये देश सेवा है। एक वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करता है, एक किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है, एक युवा ईमानदारी से अपना कार्य करता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, तो ये भी देश सेवा है।
0: जी जी।
1: लेकिन श्रोताओं, रक्षा क्षेत्र में करियर चुनने वाले युवाओं को देश की सुरक्षा से जुड़ी विशेष जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलता है। इसलिए भारतीय वायुसेना दिवस हमें केवल वायुसेना को याद करने का दिन नहीं, बल्कि युवाओं को सोचने का अवसर भी देता है कि हम अपनी क्षमता और प्रतिभा को देश के काम कैसे ला सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से हमारे दोस्तों से हम ये कहना चाहेंगे कि युवा साथियों, अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा है और आपकी रुचि रक्षा के क्षेत्र में है, तो अपने सपने को गंभीरता से लीजिए, अपने विषय को समझिए, अपनी योग्यता को पहचानिए और आधिकारिक जानकारी को जुटाइए, अपनी पढ़ाई मजबूत कीजिए, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार भी कीजिए, और सबसे जरूरी अनुशासन को अपनी आदत में अपनाइए।
1: बिल्कुल,
0: करियर का चुनाव केवल इस आधार पर न करें कि कौन सी नौकरी ज्यादा आकर्षक आपको दिखाई दे रही है, बल्कि ये भी सोचे दोस्तों कि आपकी रुचि, आपकी योग्यता और आपका व्यक्तित्व किस क्षेत्र के साथ सबसे बेहतर तरीके से जुड़ सकता है।
1: बिल्कुल, और भारतीय वायुसेना दिवस पर हम उन सभी वीरों और कार्मिकों के योगदानों को सम्मान पूर्वक याद करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और सेवा में अपना योगदान दिया था।
0: बिल्कुल,
1: और आज के युवाओं से यही कहना चाहेंगे श्रोताओं कि सपना सिर्फ अपने भविष्य का मत देखिए, अपने देश के भविष्य में भी अपनी भूमिका को खोजिए।
0: जी हाँ।
1: जहाँ जुनून को अनुशासन मिले, जहाँ हुनर को जिम्मेदारी मिले, वहीं से देश सेवा की राह निकलती है। तो श्रोता साथियों, आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना और रक्षा क्षेत्र युवाओं के लिए केवल रोजगार का क्षेत्र नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन, नेतृत्व और देश सेवा से जुड़ा एक करियर विकल्प भी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आपके मन में भी कोई सपना है तो उसे सिर्फ सोच कर मत छोड़िए, उसके बारे में सही जानकारी जुटाइए, तैयारी शुरू कीजिए और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मेहनत को अपनी पहचान जरूरी है और अपने हुनर से भारत के भविष्य को आप मजबूत बनाइए।
0: बिल्कुल जागृति जी, इन्हीं आशाओं के साथ, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, बागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भाई बोले, जी अरे ग्राम सभा में बोली बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जरूर बोली में रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं ये हमें रक्षा कर रहे हैं, तो आओ बोलने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, मैं जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोलने आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुनिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, लोक अदालत में लंबित न्यायालयीन एवं प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह समझौते के माध्यम से शीघ्र एवं सरल निस्तारण कराया जा सकता है। जी बिल्कुल, लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण पर समय एवं धन की बचत होती है तथा पक्षकारों को त्वरित न्याय प्राप्त होता है। आइए अपने विवादों का समाधान लोक अदालत में पाएं। अधिक जानकारी एवं निःशुल्क विधिक सहायता हेतु आप अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: साथियों, आपने कभी किसी बच्चे से पूछा है कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? कशिश, कोई बच्चा कहता है डॉक्टर, कोई कहता है पुलिस अधिकारी, कोई शिक्षक बनना चाहता है तो कोई किसान, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार, तो कोई कहता है मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे गांव का नाम रोशन हो। बच्चों के ये छोटे छोटे जवाब वास्तव में बहुत बड़े सपनों की शुरुआत होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कई बार हम बड़े लोग अनजाने में बच्चों के सपनों को छोटा कर देते हैं। हम कह देते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमारे घर में इतना पैसा कहाँ है, पहले पढ़ाई तो ठीक से कर लो, गाँव के बच्चे इतना बड़ा सपना कैसे देख सकते हैं। क्या हम ये कह देते हैं कि ये तो आपके काम का सपना नहीं है, आप लड़की हैं, दूसरा सपना देखिए। लेकिन श्रोता साथियों, याद रखिए कि सपना देखने के लिए अमीरी नहीं हिम्मत चाहिए, और उस सपने को दिशा देने के लिए परिवार, शिक्षक और समाज का साथ चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में हम इसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे कि बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए कैसे प्रेरित करें और उनके सपनों को पूरा करने की राह में हम उनका साथ कैसे दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना हम कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि सपना केवल ये नहीं होता कि बच्चा बड़ा होकर कौन सी नौकरी करेगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों का सपना ये भी हो सकता है कि वह अपने गांव में अच्छा शिक्षक बने, वह खेती में नई तकनीक अपनाए, वह अपने परिवार की मदद करे, वह अच्छा खिलाड़ी बने, वह किताबें लिखे और साथ ही वह पेड़ पौधों और प्रकृति की रक्षा को भी महत्व दे, वह अपने आसपास के लोगों की मदद करे। यानी कि श्रोता साथियों, बच्चे का सपना उसकी रुचि, क्षमता और कल्पना से पैदा होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी कर्मचारी ही बनना चाहे। हमें बच्चे से ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हें वही क्यों नहीं बनना जो हम चाहते हैं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम किस काम को करके खुश होते हो, तुम्हें अपने आसपास क्या बदलना अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही सवाल बच्चे के भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने में मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बचपन में मन जो है वो बहुत कल्पनाशील होता है। बच्चा अपने सामने दिखाई देने वाली दुनिया से आगे की दुनिया की कल्पना कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: एक बच्चा मिट्टी से घर बनाते बनाते वास्तुकार बनने का सपना देख सकता है, खेत में पिता के साथ काम करते हुए कृषि वैज्ञानिक बनने की सोच सकता है, गांव के किसी शिक्षक को देखकर शिक्षक बनने की इच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी खिलाड़ी को देखकर खुद मैदान में उतरने का सपना देख सकता है। श्रोता साथियों, अगर उस समय उसे प्रोत्साहन मिलती है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर बार बार उसकी बात का मजाक बनाया जाता है, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है या उसके सपनों को असंभव बताया जाता है तो धीरे धीरे वह अपनी इच्छा बताना ही बंद कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे बच्चे के सपनों को तुरंत सही या गलत कहने के बजाय पहले सुनना जरूरी है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। बच्चा घर में जिस तरह की बातें सुनता है उसी तरह अपने बारे में सोचने लगता है। अगर कशिश माता पिता उससे कहते हैं कि तुम कोशिश करोगे तो सीख सकते हो, गलती होना कोई बुरी बात नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है, तो बच्चा मुश्किल काम करने से डरता नहीं है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन यदि अगर हर गलती पर उसे डांट मिले और हर समय दूसरे बच्चों से तुलना हो तो उसके मन में यह बात बैठ सकती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बच्चे की सफलता से ज्यादा उसके प्रयास की तारीफ कीजिए। बच्चे ने चित्र बनाया है तो केवल यह मत कहिए कि बहुत सुंदर है, पूछिए कि तुमने यह चित्र बनाने के बारे में कैसे सोचा। बच्चे ने कोई छोटी चीज ठीक की है तो कहिए कि तुमने कोशिश की है, यही सबसे अच्छी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे छोटे छोटे शब्द कशिश बच्चे के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम बातें कर रहे हैं, ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।
2: टक टक चिक टक चिक टक

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम चर्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें किताबें और कहानियां बन सकती है सपनों की खिड़की को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, हर परिवार के पास महंगे साधन हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे को किताब, कहानी, बातचीत और आसपास की दुनिया से सीखने का अवसर जरूर दिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: उसे महान व्यक्तियों की कहानी सुनाइए, लेकिन केवल उसके सफलता की कहानी नहीं, यह भी बताइए कि उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितनी बार असफल हुए और फिर भी प्रयास क्यों नहीं छोड़ा।
1: बिल्कुल।
0: बच्चा जब यह समझता है कि सफल व्यक्ति भी शुरुआत में साधारण व्यक्ति ही था, तो उसके भीतर एक विश्वास पैदा होता है, अगर मैं सीखता रहूं और मेहनत करता रहूं, तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। ऐसी चीजें बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: किसी बच्चे का गाँव में जन्म लेना उसके सपनों की सीमा तय नहीं करता। गांव का बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, खिलाड़ी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कलाकार बन सकता है, उद्यमी बन सकता है, किसान बनकर भी खेती को नई दिशा दे सकता है। इसलिए हमें बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कि तुम कहाँ पैदा हुए हो, यह तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तुम कहाँ तक पहुँचोगे, इसकी सीमा तुम्हारा जन्म स्थान तय नहीं करता। इसलिए गाँव के बच्चे अपने आस पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रकृति, खेती, पशुपालन, मेहनत, सामूहिक सहयोग और संसाधनों का उपयोग।
1: जी हाँ।
0: इन अनुभवों को उनकी कमजोरी नहीं, सीखने की ताकत बनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही बच्चों पर सपना थोपना नहीं, बल्कि सपना समझना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों, बच्चे को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने का मतलब यह नहीं है कि माता पिता अपना अधूरा सपना बच्चे पर ही डाल दें।
0: बिल्कुल।
1: अगर पिता डॉक्टर बनना चाहते थे, तो जरूरी नहीं है कि बेटा भी डॉक्टर ही बने। अंजलि जी, अगर माँ चाहती थी कि बेटी सरकारी नौकरी करे, तो जरूरी नहीं है कि बेटी का सपना भी वही हो। कहने का मतलब यही है कि हमें बच्चों को रास्ता दिखाना होगा, लेकिन रास्ता चुनने में उसकी आवाज भी सुननी होगी। उसे अलग अलग चीजें सीखने का मौका दीजिए, कभी खेल, कभी चित्रकारी, कभी कहानी, कभी खेती, कभी विज्ञान से जुड़ी गतिविधियाँ, तो कभी कोई हस्तकला। धीरे धीरे बच्चा कुछ समझने लगता है कि उसे किस काम में सबसे ज्यादा आनंद आता है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ सपनों को लक्ष्य में बदलने की जरूरत है। जी हाँ श्रोता साथियों, सपना देखना पहला कदम है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बदलना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: मान लीजिए कि बच्चा कहता है कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, तो हम यह नहीं कहेंगे कि यह बहुत बड़ा सपना है, बल्कि हम पूछेंगे कि आज से तुम क्या कर सकते हो। शायद वह रोज थोड़ा थोड़ा विज्ञान पढ़े, नई चीजों के बारे में सवाल पूछे, छोटे प्रयोग करे, किताबें पढ़े और अपने शिक्षक से सवाल पूछे।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह कोई बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता है, तो रोज अभ्यास की आदत बन सकती है, यानी कि बड़ा सपना, छोटी रोजाना की कोशिश और मजबूत शुरुआत, यही है सपने को लक्ष्य में बदलने की पहचान।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, में बच्चों को असफलता से डरना नहीं सिखाना है। श्रोता साथियों, बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या कई बार असफलता का डर होता है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि बच्चा प्रतियोगिता में हार गया, परीक्षा में कम अंक आए, खेल में चयन नहीं हुआ, चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं मिला, तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे। बल्कि इसके बजाय हम बच्चों से ये पूछे कि इस बार क्या सीखने को मिला, क्योंकि असफलता अंत नहीं है, कई बार वही हमें अगली कोशिश के लिए तैयार करती है। अंजलि जी, बच्चों को हमें यह समझाना जरूरी है कि हारने से सपना खत्म नहीं होता, कोशिश छोड़ देने से रास्ता जरूर रुक जाता है। ऐसे में समुदाय भी बच्चों को सपनों का साथी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसे कि साथियों, बच्चे केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरा समुदाय बच्चों के भविष्य को आकार देता है। गांव में यदि शिक्षक बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, कोई किसान खेती के नए तरीके बताएगा, कोई खिलाड़ी बच्चों को खेल का अभ्यास करवाए और कोई कलाकार अपनी कला सिखाएगा, तो बच्चों के सामने सीखने के नए रास्ते खुल सकते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि बच्चे केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरा समुदाय बच्चे के भविष्य को आकार देता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसा कि आपने अभी बताया, इसी के साथ यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें गांव में ऐसे कुछ छोटी मोटी गतिविधियां शुरू करनी है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि बच्चे के लिए कहानी और पुस्तक पढ़ने का समय, स्थानीय लोगों से मेरे काम की मेरी कहानी की बातचीत, बच्चों के चित्र और विज्ञान गतिविधियां, स्थानीय खेलों की प्रतियोगिता, बच्चों के सपनों पर बातचीत, महीने में एक दिन में बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम, इन गतिविधियों के लिए हमेशा बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है समय, प्रोत्साहन और बच्चों पर भरोसे की।
1: जी
0: तो श्रोता साथियों, जरा सोचिए कि एक छोटा बच्चा अपने घर के आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा जिससे सबको मुझ पर गर्व हो। उस समय उसे यह मत बताइए कि रास्ता कितना कठिन है, पहले उसका सपना सुनिए, उसके बाद उसे रास्ता समझाइए, उसका हाथ पकड़िए, लेकिन उसकी जगह चलने की कोशिश मत कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बच्चे को हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती जो उसके लिए रास्ता तय करते, कई बार उसे केवल एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे कि तुम कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: जी हाँ,
0: यही एक वाक्य बच्चे के भीतर बहुत बड़ा विश्वास पैदा कर सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ऐसे में माता पिता क्या कर सकते हैं अगर इसको लेकर बात करें तो आज से हम अपने घर में कुछ छोटी शुरुआत कर सकते हैं साथियों। पहले ये कि रोज कुछ मिनट बच्चे से उसकी पसंद और नापसंद, उसके सपनों के बारे में बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा यह कि उसकी तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करेंगे। तीसरा यह अंजलि जी कि उसकी गलती पर तुरंत डांटने के बजाय उसे सुधारने का अवसर देंगे।
0: बिल्कुल।
1: चौथा यह कर सकते हैं माता पिता कि बच्चे की रुचि को पहचानने और उसे सीखने के अवसर देंगे, सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना सिखाएंगे और बच्चों को ये विश्वास दिलाएंगे कि मेहनत सीखने की इच्छा और लगातार प्रयास बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे हम कि किस तरीके से बच्चे सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए। तो श्रोता साथियों, बस हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है और निरंतर आगे किस तरीके से बढ़ना है उसके लिए प्रेरणा देनी है।
1: बिल्कुल,
0: ताकि बच्चा जो है वो बिना डर के अपने सपनों को पूरा कर पाए। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे, सपना बड़ा रखना जरूरी है, शुरुआत छोटी हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: आशा करते हैं कशिश के आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से जो बातचीत रही है कि बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए हम प्रेरित कैसे कर सकते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये सभी बातें श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हमरो भाई बोनो ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो फागड़ रेडियो 98.8 FM माते ने आप सबनो घणमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सहो कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है जेम की आपड़ा खेती ने हाते बकरी गाय भेस नो पालन करो हो तो एणन ते की जुड़े जे संसाधन है एणन नो आपड़े बेहतर उपयोग हरते करी शकन एनो हु महत्व है एने लेने। तो वात है तो घणा कानी थाएंगा कार्यक्रम में पण कार्यक्रम नी शुरुआत में आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वात है। तो भाई बहनों आप हमरते रहसु आपड़ो रेडियो आपड़ी वात है फागड़ रेडियो 98.8 FM माते।

0: માઇન બનો ગીત તો આયશું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ગીત કી પહેલે આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે આપણે ખેતીને હાથે જઈ વખત ગાય બકરી ભેંસનું પાલન કરો હો તો એના તકી મળવા વાળા જે સંસાધન હે એનાનું આપણે બહેતર તરીકા તકી ઉપયોગ હરતે કરી શકો તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણા કાર્યક્રમ તકી જોડી રહે વિષય વિશેષજ્ઞ ને એણન તકી વાત કરી રહી હે આપણા કશિશ બોન તો સબ તકી પહેલા આપણે હમરી લણની વાત ને મોરે કરે આપણી વાત સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર જી
0: આપકા વાગડ રેડિયો પરિવાર મે બહોત બહોત સ્વાગત હે
1: જી ધન્યવાદ
0: જૈસા કે આજ આપ હમારી કાર્યક્રમ સે જોડ રહે હે તો સબસે પહેલે તો મે કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે આપકા પરિચય જાનના ચાહુંગી
1: જી મેરા નામ માંગીલાલ પ્રજાપત હે और मैं जो है वागदरा संस्था में सीड और सोइल को लेकर कार्य कर रहा हूँ वर्तमान में
0: जी सर तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपसे बातचीत का विषय है कि खेती के साथ बकरी गाय भैंस पालन के संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है तो अब आप हमारे किसान भाइयों को यही बता दीजिए कि वे पशुपालन के संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं
1: जी, तो देखिए जब हम हमारे गाँव की खेती की बात करते हैं तो गाँव की खेती और पशुपालन दोनों का जो रिश्ता है बहुत गहरा जुड़ा हुआ है और ये रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के बिना ये बहुत ही कम संभव है कि ये हो सकता है
0: जी जी।
1: अगर जहाँ बेहतर फसल की बात करते हैं जिसमें पोषण की दृष्टि से स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आपको देसी खाद चाहिए होता है और इसी तरह अगर हम खेती की बात करते हैं तो पशुओं के स्वास्थ्य उनका पोषण के लिए उनकी को एक अच्छा चारा की व्यवस्था चाहिए होती है जो खेत से मिलता है तो ये एक दूसरे के ऊपर बहुत निर्भर है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि बकरी पालन गाय और भैंस पालन इनका जो संसाधनों का उपयोग की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो खेती की हमारी जो पूरी व्यवस्था है उसमें पशुओं का जो है गोबर खाद की हम बात करते हैं वो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी खेती का।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे हम बात करते हैं कि पशुओं से जो भी अवशिष्ट पदार्थ जो प्राप्त होते हैं वो हमारी खेती में उपयोग होते हैं और खेती में जब हम उनका उपयोग करते हैं तो हमारी फसल है उसका उत्पादन उसकी गुणवत्ता पोषण की दृष्टि से वो बेहतर उत्पादन देती है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह आप देखेंगे कि उदाहरण के तौर पे हम पशुओं के चारे की अगर बात करते हैं तो जैसे गेहूं का भूसा है मक्का का डंठल है जवार बाजरा है तो ये सारी चीजें हैं जो पशुओं के खाने में काम आती है
0: जी जी।
1: ताकि वो अच्छे से स्वस्थ रहे और उनको समय से चारा मिले इसलिए एक दूसरे के काफी पूरक है। और ये जो बात करते पशुपालन की तो पशुपालन हमारे समाज का जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसका बरसों से रिश्ता है और हर घर में हम पशुपालन करते हैं क्योंकि हमें दही भी मिले बच्चों के लिए परिवार के लिए इसके साथ में जो है आपको खेती के लिए खाद भी मिले तो इस तरह से हम जो है इनका उपयोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से।
0: जी सर। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को बताया है कि वे खेती के साथ साथ बकरी और गाय भैंस पालन के संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं नहीं आप हमें अब ये बताइए कि खेती और पशुपालन को साथ जोड़ना क्यों जरूरी है।
1: जी देखिए जैसा हमने बात की शुरुआत में कहा था कि खेती और पशु दोनों का रिश्ता गहनता से जुड़ा हुआ है तो जब हम बात करते हैं तो इन दोनों को एक साथ लेकर ही चलना पड़ता है क्योंकि आप देखो एक तरफ आपको पशुओं के लिए खेती से चारा मिल रहा है
0: जी
1: तो दूसरी तरफ आपको पशुओं से प्राप्त गोबर से जैविक खाद मिल रही है उससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं उससे उखेड़ा तैयार कर सकते हैं और बाहर से खाद खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी
0: जी जी।
1: क्योंकि आपको जितना खाद चाहिए वो आपके घर से पशुओं के माध्यम से आपको मिल रहा है। दूसरा इसमें यह है कि खेत से जो निकलने वाला जो चारा होता है संसाधन होते हैं वो पशुओं को काम आ जाते हैं तो आपको पशुओं के लिए चारा खरीदने की जरूरत नहीं है और आपको खेत के लिए खाद खरीदने की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसका। दूसरा है कि जो पशु है वो जो हमारे खेत की जैसे हम बैल की बात करते हैं तो वो आपको खेत की जुताई में आपका साथ देता है वो हमेशा जो है हमारे आदिवासी किसान भाइयों का बहुत अच्छा साथी रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसी तरह हम दूसरे को जोड़ना बहुत जरूरी है और इन दोनों को हम जोड़ते हुए नहीं देखेंगे तो काफी कई प्रकार का संकट अब आर्थिक दृष्टि से देखो आप पोषण की दृष्टि से देखो तो आपके सामने खड़ा हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अगर आप खेती में पशुपालन नहीं होगा तो खेती में आप रासायनिक खाद लाके डालोगे अगर रासायनिक नहीं भी डालोगे तो गोबर खाद अगर डालना होगा तो आपको खरीदना पड़ेगा तो आपके जेब पे वो भारी पड़ेगा। उसी तरह अगर आप खाने के लिए एक अच्छा स्वच्छ अनाज चाहिए आपको तो वो कैसे मिलेगा देसी खाद बीज से तो देसी खाद आपके पास नहीं होगा तो पोषण की दृष्टि से जो है आपको एक अच्छा शुद्ध जो भोजन है गुणवत्तापूर्ण जो काफी पोषक तत्वों से भरा होता है वो नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए दोनों को जोड़ना जरूरी।
0: जी सर, आपने सही कहा। अब यही मैं ये जानना चाहूंगी कि खेत में चारा फसल क्या होती है और ये क्यों जरूरी है।
1: देखिए, चारा फसल की हम बात करते हैं तो सीधा सा ये है कि हमारे पास में जो पशु है उनको खाने के लिए चारा मिलना चाहिए और उसके लिए हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो खेत में करते हैं। दूसरा बात यह है कि पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए जो किसान भाई है वो केवल बाजार से चारा खरीदने पर निर्भर नहीं रहते हैं क्योंकि उनके पास खुद के खेत का है। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे जवार है, जवार जो है चारा फसल आपकी, आप अच्छे से जो पशुओं का स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं पशुओं के लिए। इसी तरह से बाजरी है, बाजरी हम जो है बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में अगर आप पशुओं के लिए करते हैं तो क्या होता है कि जैसे दुधारू पशु होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहती है और जो दूध का उत्पादन है पशुओं के माध्यम से वो भी आपका अच्छा रहेगा और पशुओं का स्वास्थ्य जो काफी अच्छा रहेगा उनका, तो इसके लिए भी जरूरी है। इसके साथ में मक्का देखते हैं तो मक्का का दोनों तरह से हम उपयोग करते हैं। तो मक्का एक तो खाने के लिए आपको मक्का हो जाती है, पशुओं के जो डंठल निकलते हैं उसका चारा आपको मिल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह हम कई प्रकार के जैसे घास की बात करते हैं तो घास हम लगाते हैं जो हमारे परंपरागत है तो उसका हम कर सकते हैं। कुछ दालें आप अगर लगाते हो तो उनसे भी आपको पशुओं को चारा मिलेगा उनकी पत्तियों के माध्यम से। तो ये चारा फसलें भी जरूरी है कि जब भी आप इसकी योजना बनाए तो आप दोनों संदर्भ को देखें।
0: बिल्कुल,
1: एक तो आपके घर परिवार के लिए पोषण सुरक्षा देखें कि क्या क्या खाने को मिलेगा और कैसे उसकी विविधता को कायम कर सकते हैं
0: जी,
1: वही विविधता पशुओं को चारा भी देगी। तो दोनों तरह से सोच के उसको करना चाहिए। दूसरा कि कई बार क्या होता है कि जब हम बुआई करते हैं
0: जी जी,
1: तो कुछ ऐसे फसलें हैं जिनसे चारा नहीं मिलता है, तो आप उनकी जो खेत के मेड़े हैं वहां पे आप घास लगा सकते हो, बाजरा जवार वो कर सकते हो ताकि आप उन मेड़ों के माध्यम से भी आपको जो चारा उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह हमें देखना जरूरी है।
0: जी सर, तो सर जैसा कि आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और ढेर सारी बातों से वे अवगत हो पा रहे हैं
1: जी।
0: अब यही मैं ये जानना चाहूंगी कि पशुओं के गोबर का खेती में कैसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
1: देखिए, हमारे जो परंपराएं हैं हमारे समाज की, हम जानते हैं कि जब तक गोबर को पूरी तरह सड़ाया नहीं जाता है तो उसका उपयोग नहीं कर सकते
0: जी।
1: क्योंकि जैसे आपको गोबर अगर पशु ने दिया वो डायरेक्ट खेत में डालोगे तो वो ज्यादा प्रभावी या उतना गुण नहीं करेगा उस जमीन को जितना करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो इसके लिए हम कर सकते हैं जैसे हम कंपोस्ट की बात

0: उस खाद को पकने देते थे, बिल्कुल ताजा जो है उसका उपयोग जो खेती में नहीं करते थे।
1: जी
0: तो
1: जी।
0: इस तरह हमें बेहतर खाद बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा कि हमें हमारे पास जितनी खेती है उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास पशु पर्याप्त है या नहीं। अच्छा, पर्याप्त नहीं है तो आप पशु ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: या छोटे पशु पाल सकते हैं, तो उस तरह आपकी जो खेत की खाद की सुरक्षा है वो एकदम तैयार रहेगी आपके लिए।
1: जी सर। तो सर, जैसा कि आज आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जुड़े और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दोस्तों को दी
0: जी।
1: अब यही कार्यक्रम के अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास उतने पर्याप्त पशु होने चाहिए कि हमारे खेत के लिए पर्याप्त खाद मिले, तो आपकी घर की जो पोषण सुरक्षा है वो आपकी सुरक्षित रहेगी और आपकी जो जेब है उस पे भारी नहीं पड़ेगा, बाजार नहीं जाना पड़ेगा, बाजार की निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाए।
1: बिल्कुल। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपना कीमती अमूल्य समय हमारे श्रोता साथियों को दिया।
0: जी, धन्यवाद।
2: જેમ કે ભાઈ બોનો, આપણે આપણા વાસમાં માંગીલાલજી સર જોડે ટકા હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી બતાડ્યું હે કે બકરી ગાય ને ભેંસ તકી મલવાવારી જે ચીજે હે એણોનું આપણે પ્રયોગ ખેતી મેં હરતે કરી શક ને કઈ કઈ વાતનું ધ્યાન રાખીને આનો લાભ આપણે પ્રાપ્ત કરી શક। તો અણા વિશે માતે જેમ કે વાત ઘણા કની થઈ ગઈ હે, હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટ પડવાનું। તો સૂટ તો પડ પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટો।

भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि, हमारे श्रोता साथियों से बातचीत का विषय रहने वाला है देश की सुरक्षा में हमारी जिम्मेदारी को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जब हम देश की सुरक्षा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर सीमा पर तैनात सैनिकों की तस्वीर आती है। बर्फीली पहाड़ियों पर खड़े जवान, कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हुए सुरक्षा बल और दिन रात अपनी ड्यूटी निभाते हमारे वीर जवान। लेकिन क्या देश की सुरक्षा केवल सीमा पर खड़े जवानों की जिम्मेदारी है? नहीं, देश की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: सीमा पर सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो देश के भीतर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों से राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक कानून का सम्मान करता है श्रोताओं, अफवाहों से बचता है, सही जानकारी साझा करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, साइबर सुरक्षा का ध्यान रखता है और जरूरत के समय प्रशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करता है।
0: बिल्कुल,
1: और यही सोच सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत करती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से आपको अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं देश की सुरक्षा में हमारी जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे साथियों, जागो, देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी पहचानो, देश की सुरक्षा में अपना छोटा सा योगदान जरूर निभाओ।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि देश की सुरक्षा का अर्थ केवल बाहरी खतरे से देश की रक्षा करना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सुरक्षा का संबंध हमारे समाज, परिवार, गाँव, शहर, पर्यावरण और डिजिटल दुनिया और नागरिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी गाँव में लोग आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान करते हैं तो वह गांव मजबूत होता है। अगर नागरिक अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय जानकारी की सत्यता जांचते हैं तो समाज मजबूत होता है। और अगर लोग साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहते हैं तो डिजिटल सुरक्षा मजबूत होती है। अगर नागरिक आपदा के समय एक दूसरे की मदद करते हैं तो देश की सामूहिक क्षमता बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, देश की सुरक्षा जो है वो एक बड़ा आधार है जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी का।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, कल्पना कीजिए आपके गांव या मोहल्ले में कोई संदिग्ध स्थिति दिखाई देती है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद से कोई कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदार व्यक्ति या संबंधित प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। और अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसी खबर आए जिससे लोगों में डर या तनाव पैदा हो सकता है तो उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय पहले उसकी सत्यता जांचनी जरूरी है। यही जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। साथ ही देश की सुरक्षा में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम कानून और नियमों का सम्मान करें। हम देखते हैं अंजलि कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। एक जिम्मेदार नागरिक ही समझता है कि नियम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी है। जब लाखों नागरिक नियमों का पालन करते हैं श्रोताओं, तो देश में व्यवस्था मजबूत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज सूचना जो है वो बहुत तेजी से फैलती है।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया के माध्यम से कोई संदेश कुछ ही मिनटों में हम देखते हैं कि हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन श्रोता साथियों, हर संदेश सही हो या जरूरी नहीं है। कभी कभी गलत जानकारी समाज में डर, भ्रम और तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी संवेदनशील खबर को बिना जांचे आगे न भेजें। एक संदेश भेजने से पहले रुकिए, सोचिए और सत्यता जांचिए। याद रखिए कि सही जानकारी सुरक्षा बढ़ाती है और गलत जानकारी परेशानी बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं जागृति जी कि हमारा बहुत सारा जो समय है वो मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, बैंकिंग, खरीदारी, सरकारी सेवाएं और बातचीत, सब कुछ डिजिटल माध्यम से हो चुका है। इसलिए श्रोता साथियों, साइबर सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी बन गई है। हमें अपने पासवर्ड सुरक्षित रखने चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले हमें सोचना होगा। ओटीपी और बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। किसी संदेश या कॉल के बारे में परिवार के बड़े लोगों और जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्था को जानकारी देना भी जरूरी है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी होती है।
0: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि बाढ़, भूकंप, आग, तेज बारिश या किसी अन्य आपदा के समय नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे समय में घबराहट फैलाने के बजाय शांत रहना चाहिए, जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और आपातकालीन व्यवस्था में बाधा नहीं डालनी चाहिए। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की सहायता करना हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। श्रोताओं, सुरक्षा केवल खतरे से बचना नहीं है, सुरक्षा का अर्थ है मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें हो रही है कि किस तरीके से देश की सुरक्षा में हमारी जिम्मेदारी है। ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल नफरत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना, आपदा के समय हमारी जिम्मेदारी क्या रहती है, वहीं अब बात करें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की। तो श्रोता साथियों, सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल, सरकारी भवन, बसें, पानी की टंकियां और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं हम सभी की संपत्ति है। इसका नुकसान जनता का ही नुकसान है, इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना केवल किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज के संसाधनों को नुकसान पहुंचाना है। अगर हम अपने गांव की सड़क, स्कूल, पानी की व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल करते हैं जागृति जी, तो हम राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हमें चाहिए कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी हम देखरेख करें और ध्यान रखें कि किस तरीके से इसका ध्यान रखना भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के कर्तव्यों में ही शामिल होता है।
1: बिल्कुल अंजलि। साथ ही हम भारत विविधताओं का देश है, हम सभी जानते हैं। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा खान पान अलग हो सकता है और है भी सही, हमारा पहनावा भी अलग है और परंपराएं भी अलग हो सकती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता। किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी भाषा, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर भेदभाव न करना भी देश की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है। जब समाज में विश्वास और भाईचारा बढ़ता है श्रोताओं, तो देश मजबूत होता है। इसीलिए हमें मतभेदों के बावजूद संवाद बनाए रखना होगा। देश के युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की भी महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं अंजलि। हम देखते हैं कि युवाओं की ऊर्जा अगर शिक्षा, कौशल, नवाचार, खेल, सामाजिक सेवा और रचनात्मक कार्यों में लगती है तो देश आगे बढ़ता है। युवाओं को गलत जानकारी, ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध और किसी भी प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि से सावधान रहना जरूरी है।
0: जी जी।
1: सही जानकारी प्राप्त करना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना और समाज के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम अक्सर देश की सुरक्षा को केवल मानव सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, पर्यावरण भी हमारी सुरक्षा का आधार है।
1: बिल्कुल।
0: जल, जंगल, जमीन और जीव विविधता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ों की रक्षा करना, पानी बचाना, कचरे का सही प्रबंधन करना और प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना भी बहुत जरूरी है, और इन सारी चीजों को लेकर आने वाली पीढ़ियों को भी हमें कई सारी चीजें सिखाने की जरूरत है। क्योंकि एक सुरक्षित देश वही है जहाँ नागरिक अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करता हो। यही बात करें तो हमारे श्रोता साथियों से कुछ सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जैसे आप अगर अपने गांव, मोहल्ले, शहर और देश की सुरक्षा के लिए आज कुछ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? शायद आपका जवाब बहुत बड़ा न हो, लेकिन आप कह सकते हैं श्रोता साथियों कि मैं अफवाह नहीं फैलाऊंगा, मैं साइबर ठगी से सावधान रहूंगा, मैं नियमों का पालन करूंगा, मैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपदा के समय जरूरतमंद की मदद करूंगा। यही छोटे छोटे संकल्प मिलकर बड़े बदलाव का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कह सकते हैं कि सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है। सच्चा स्वराज तब मजबूत होता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझते हैं। हम अक्सर पूछते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी पूछना चाहिए कि देश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। श्रोताओं, अपने काम को ईमानदारी से करना, नियमों का पालन करना, दूसरों का सम्मान करना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, सही जानकारी फैलाना और जरूरत के समय समाज के साथ खड़ा होना, ये सभी राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। देश को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े पद पर होना जरूरी नहीं है। एक किसान ईमानदारी से खेती करके योगदान देता है, एक शिक्षक बच्चों को ज्ञान और जिम्मेदारी की सीख देकर योगदान देता है, एक डॉक्टर सेवा देकर योगदान देता है, एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करके अपना योगदान देता है और एक नागरिक नियमों का पालन करके योगदान देता है। यानी कि अंजलि, देश की सुरक्षा और मजबूती में हर नागरिक की भूमिका जरूर होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही श्रोता साथियों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, मान लीजिए कि किसी गांव में एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा कचरा देखकर सोचता है कि यह मेरा काम नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है, तीसरा भी यही सोचता है, लेकिन एक व्यक्ति आगे बढ़कर कचरा उठाता है और लोगों से कहता है कि ये रास्ता हम सभी का है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी हम सभी की है। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और यही नागरिक जिम्मेदारी है कि देश भी ऐसा ही बनता है। एक व्यक्ति की जागरूकता दूसरे को प्रेरित करती है और धीरे धीरे पूरा समाज जो है वो जागरूक बनता जाता है।
1: बिल्कुल। तो हमारे श्रोता साथियों को अंजलि कहना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर खड़े जवानों की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जवान सीमा की रक्षा करते हैं और हम नागरिक देश के भीतर जिम्मेदारी, अनुशासन, एकता और जागरूकता की रक्षा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमारी छोटी सी सावधानी किसी बड़ी परेशानी को रोक सकती है। हमारी सही जानकारी किसी अफवाह को फैलने से रुक सकती है, हमारा अनुशासन व्यवस्था को मजबूत कर सकता है, हमारा भाईचारा समाज को जोड़ सकता है और हमारी जिम्मेदारी देश को मजबूत बना सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, हम अफवाह न फैलाएं, न गलत जानकारी पर विश्वास करें, कानून और नियमों का सम्मान करें, प्रकृति और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, डिजिटल दुनिया में सावधान रहें और जरूरत के समय अपने समाज के साथ खड़े रहें, क्योंकि सुरक्षित देश केवल मजबूत सीमाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से बनता है और यही सच्चे स्वराज की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, जिम्मेदार नागरिक, मजबूत समाज और सुरक्षित राष्ट्र,
1: बिल्कुल
0: आहो मिलकर निभाएं श्रोता साथियों अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही सच्चे स्वराज की तैयारी है। इसी संदेश के साथ अब कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज की सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, लेकिन क्यों ना जागृति जी, जाने से पहले एक और प्यारे से गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक क्यों और समय पर चिकित्सीय सलाह लेने की आदत क्यों जरूरी है। हम सभी जानते हैं श्रोता साथियों कि जब शरीर में कोई परेशानी होती है, बार बार सिर दर्द, लगातार खांसी, पेट दर्द, कमजोरी, चक्कर, बुखार और कोई और तकलीफ हो तो हम में से कई लोग तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाने के बजाय पहले घर पर ही इंतजार करते हैं। कोई कहता है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई पड़ोसी या रिश्तेदार की सलाह से दवा ले लेता है और कई बार मन में एक झिझक भी होती है।
0: जी हाँ,
1: डॉक्टर को क्या बताऊंगी, इतनी छोटी सी बात के लिए स्वास्थ्य केंद्र क्यों जाऊं या लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, बीमारी छोटी हो या बड़ी, उसके बारे में सही समय पर चिकित्सीय सलाह लेना समझदारी हो सकता है। आज हम जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा कि स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक आखिरकार हमें क्यों होती है और इस झिझक को दूर करके समय पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेने की आदत कैसे बनाई जा सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक क्यों और समय पर चिकित्सीय सलाह लेने की आदत क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हम रोज के काम ही वो आसानी से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: परिवार की जिम्मेदारियां निभा पाते हैं, मेहनत कर पाते हैं और अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, जब स्वास्थ्य खराब होता है तो छोटे से परेशानी भी हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कई दिनों से कोई परेशानी हो रही होती है लेकिन वह स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास जाने से बचता रहता है। कोई कहता है कि अभी तो दर्द थोड़ा ही है, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि अस्पताल जाने में समय लगता है। कोई पैसे की चिंता करता है तो कोई जांच के नाम पर डर जाता है। कई बार श्रोता साथियों, लोग यह सोचकर भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाते कि कहीं कोई बीमारी न निकल जाए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि कई बार हम किसी गंभीर लक्षण को मामूली समझ लेते हैं। बुखार आया तो कहते हैं कि मौसम बदलने की वजह से होगा, कमजोरी हुई तो कहते हैं काम ज्यादा हो गया इसलिए हो गया होगा, पेट दर्द हुआ तो कहते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। श्रोता साथियों, एक दो दिन तक इंतजार करना कभी कभी ठीक हो सकता है लेकिन जब परेशानी बनी रहे, बढ़ती जाए या बार बार हो, तब उसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। शरीर में दिखाई देने वाला बदलाव हमारे लिए एक संकेत हो सकता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि घर में पहले किसी बीमारी में इस्तेमाल हुई दवा पड़ी हो तो कई बार लोग यूं सोचते हैं कि बिना चिकित्सीय सलाह हम यही दवाई दोबारा ले लेते हैं, लेकिन हर बार एक जैसे लक्षण का कारण एक जैसा हो जरूरी नहीं है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की दवा देखकर अपने लिए वही दवा लेना सही आदत नहीं है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या लंबे समय से बीमारी से परेशान व्यक्ति के मामले में विशेष सावधानियां हमें रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि कुछ लोग डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जांच करवाने के बाद कोई गंभीर बीमारी है वो सामने न आ जाए।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों, बीमारी का पता चलना डरने की बात नहीं है। बीमारी का समय पर पता चलना तो इलाज की दिशा में हमारा पहला कदम हो सकता है। अगर किसी परेशानी का समय पर पता चल जाए अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर उचित सलाह हमें दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे की जांच का इलाज भी शुरू किया जा सकता है। इसके उलट बीमारी को छुपाने से श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि वो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है।
1: जी जी,
0: इसलिए हमें यह सोच बदलने की जरूरत है कि जांच करवाने पर कोई बीमारी निकल जाएगी। सच्चाई तो यह है कि जांच बीमारी पैदा नहीं करती बल्कि बीमारी के बारे में जानकारी देती है।
1: जी हाँ मनीषा, कुछ लोग अपनी परेशानी किसी स्वास्थ्य कर्मी को बताने में संकोच करते हैं, खासकर ऐसे समस्या जिसमें निजी या व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी पड़े। लेकिन हमें ये समझना होगा श्रोता साथियों कि स्वास्थ्य कर्मी का काम हमारे परेशानी को समझना और सही सलाह देना है। जिस बात को हम छिपाने में शर्म महसूस कर रहे हैं, वही बात अगर समय पर बता दी जाए तो बीमारी को पहचानने और उसका सही उपचार शुरू करने में मदद मिल सकती है। कई बार बीमारी से ज्यादा हमें समाज की बातों का डर लगता है कि इतनी सी छोटी बात पर अस्पताल चली गई, कुछ नहीं था, बेकार में जांच करवा ली, पहले घर का इलाज कर लेती, फालतू में पैसे बर्बाद किए। लेकिन श्रोता साथियों, आपकी सेहत का फैसला दूसरे लोगों की राय से नहीं होना चाहिए। अगर समय पर जांच या सलाह लेने से समस्या जल्दी पहचान में आती है तो स्वास्थ्य केंद्र जाना बिल्कुल सही कदम है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से बहुत सी बार लोगों को स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक महसूस होती है और इससे हमें कैसे बचना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमें ही रखना होगा।
1: जी हाँ।
0: यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे आपको कि किसी भी बीमारी में समय पर सलाह मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि समस्या को शुरुआत में ही समझने का मौका मिल जाता है। मान लीजिए मनीषा कि किसी व्यक्ति को लगातार कमजोरी महसूस हो रही है, वह इसे केवल काम की थकान समझकर महीनों तक नजरअंदाज करता रहता है, लेकिन अगर वह समय

0: जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन इंटरनेट किसी व्यक्ति की जांच करके उसकी बीमारी तय नहीं कर सकता है।
1: जी जी।
0: एक ही लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग कारणों से हो सकता है, इसलिए श्रोता साथियों इंटरनेट पर मिली जानकारी को डॉक्टर की सलाह का विकल्प हमें नहीं समझना चाहिए। अगर किसी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंता है तो उसे योग्य चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी से बात करना हमारे लिए बेहतर हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही अब श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे हम कार्यक्रम के माध्यम से कि समय पर चिकित्सक सलाह लेने की आदत केवल एक व्यक्ति की नहीं पूरे परिवार की आदत बननी चाहिए। घर में अगर बच्चे को बार बार कोई परेशानी हो रही हो, बुजुर्ग की तबीयत में बदलाव दिख रहा हो या परिवार के किसी सदस्य की पुरानी बीमारी की नियमित जांच जरूरी है तो इसे टालना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार के बड़े अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने को सामान्य और जरूरी काम मानेंगे तो बच्चे भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होंगे। उन्हें यह सिखाना जरूरी है कि बीमारी छिपानी नहीं है, लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है, बिना सलाह दवा नहीं लेनी है और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेने में झिझक भी नहीं करनी है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम स्वास्थ्य केंद्र तो पहुंच जाते हैं लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को पूरी जानकारी नहीं देते, इसलिए अपनी परेशानी बताते समय यह बताना उपयोगी है कि समस्या कब से है, कितनी बार होती है, बढ़ रही है या कम हो रही है और पहले से कौन सी दवा चल रही है या नहीं। अगर डॉक्टर कोई जाँच करवाने या दवा लेने की सलाह दे तो उसे समझ कर ले, कुछ समझ में न आए तो दोबारा पूछने में बिल्कुल भी संकोच न करें, क्योंकि सवाल पूछना शर्म की बात नहीं, अपनी सेहत को समझना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि अपने सेहत के प्रति हमें जिम्मेदार बनना है। स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं है कि हम हर छोटी परेशानी से घबराकर अस्पताल भागें। इसका मतलब यह है साथियों कि अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना और जरूरत पड़ने पर सही समय पर सही व्यक्ति से सलाह लेना। न तो हर परेशानी को गंभीर बीमारी समझना चाहिए और न ही हर परेशानी को नजरअंदाज करना चाहिए। इन दोनों के बीच संतुलन है वो अंजलि जी हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत को लेकर कुछ छोटी छोटी आदतें हैं वो हमें अपनानी चाहिए। पहली आदत ही हमें अपने शरीर में होने वाले लगातार बदलावों पर ध्यान देना है। परेशानी लंबे समय तक बनी रहे साथियों तो हमें उसमें देर नहीं करनी और डॉक्टर के पास जाकर दिखाना है, बिना सलाह के हमें दवाई नहीं लेनी है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि डॉक्टर से अपनी परेशानी पूरी और सही जानकारी के साथ हमें बतानी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, अगर श्रोता साथियों को इन सारी चीजों में झिझक होती है तो कुछ छोटे तरीके वो अपना सकते हैं, जैसे कि अपनी परेशानी को छिपाने के बजाय परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, लक्षणों को लिख कर रखें ताकि स्वास्थ्य कर्मी को सही जानकारी दे सके, स्वास्थ्य केंद्र में कुछ समझ में न आए तो सवाल जरूर पूछें और बिना चिकित्सीय सलाह के किसी भी दवा को न लें, नियमित जांच की जरूरत हो तो उसे टाले नहीं। स्वास्थ्य केंद्र जाना बीमारी का डर नहीं बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी भी समझें, क्योंकि श्रोता साथियों स्वास्थ्य हमारे जीवन की ऐसी पूंजी है जिसकी कीमत अक्सर हमें तब समझ आती है जब कोई परेशानी सामने खड़ी होती है, लेकिन समझदारी यह है मनीषा कि परेशानी को बढ़ाने का इंतजार न किया जाए। स्वास्थ्य केंद्र जाने में झिझक कई कारणों से हो सकती है, डर, शर्म, खर्च की चिंता, समय की कमी, पुराने अनुभव या सोच की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें धीरे धीरे सोच को बदलना होगा। याद रखिए कि बीमारी को छिपाना हिम्मत नहीं, समस्या को पहचानना हिम्मत है। स्वास्थ्य केंद्र जाना कमजोरी नहीं, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, जब शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनसुना ना करें, समय पर चिकित्सीय सलाह ले, सही जानकारी ले और अपने स्वास्थ्य के बारे में फैसला समझदारी से करें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार, अपने गांव और अपने समुदाय के लिए मजबूती से खड़ा रह सकता है। श्रोता साथियों किसी भी प्रकार की कोई झिझक न करें और समय रहते अपने शारीरिक संकेतों को पहचान कर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां श्रोता साथियों, जिंदगी के भाग दौड़ में हम हर दिन किसी न किसी के साथ जुड़े रहते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी और समाज। दूसरों के लिए समय निकालना जरूरी है, लेकिन क्या हमने कभी अपने लिए भी कभी थोड़ा समय निकाला है? जी हाँ, अकेले कुछ पल बैठना हमेशा उदासी या अकेलेपन की निशानी नहीं होती है। कई बार यही शांत समय हमें खुद को समझने, अपने विचारों को व्यवस्थित करने और यह जानने का मौका देता है कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। आज का हमारा विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या अकेले समय बिताना भी जिंदगी की एक सूरत है। जी हाँ दोस्तों, भीड़ में चलना जरूरी है, लेकिन कभी कभी खुद से मिलने के लिए अकेले चलना भी जरूरी है। तो आइए आज कुछ पल दूसरों की नहीं, अपने मन की आवाज सुनने के बारे में हम बात करें। बातें ढेर सारी मैं कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य करूंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अकेले समय बिताना भी जिंदगी की एक सूरत है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि अकेले समय बिताने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति समाज या लोगों से दूर होना चाहता है। कभी कभी इंसान लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने विचारों को समझने के लिए शांत समय चाहता है। अकेलेपन में व्यक्ति को खालीपन महसूस हो सकता है, जबकि अपने लिए समय निकालने में व्यक्ति खुद को बेहतर समझ सकता है। इसलिए अकेले बिताया गया हर पल नकारात्मक नहीं होता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम दूसरों की पसंद, नापसंद, जरूरतों और उम्मीद पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जब कुछ समय अपने साथ बिताते हैं तो खुद से सवाल कर पाते हैं कि क्या मुझे वास्तव में खुशी किसी चीज से मिलती है? मैं अपने जीवन में क्या बदलना चाहता हूँ? मेरे सपने क्या हैं? मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? इन सवालों के जवाब हमें अपने जीवन के फैसले को समझने में मदद कर सकते हैं। इसलिए लगातार काम, मोबाइल, सोशल मीडिया, बातचीत और जिम्मेदारियों के बीच हमारा दिमाग हम देखते हैं कि लगातार सक्रिय रहता है। ऐसे में कुछ समय शांत बैठना मानसिक रूप से विराम देने जैसा हो सकता है। इसके लिए हमें सुबह थोड़ी देर टहलना होगा, किताबें पढ़नी होगी, संगीत सुनना होगा, डायरी लिखना या बस शांत बैठना। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पल हैं श्रोता साथियों, जो व्यक्ति को अपने विचारों को व्यवस्थित करने का अवसर देते हैं। जी हाँ, सपनों की उड़ान तभी संभव है जब हमें ये पता हो कि उड़ान किस दिशा में है। जब हम अकेले बैठ के सोचते हैं दोस्तों, तो हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई की योजना बना सकता है, युवा अपने करियर के बारे में सोच सकता है और कोई भी व्यक्ति अपने अधूरे सपनों के लिए अलग कदम तय कर सकता है। क्योंकि बहुत से बार हम देखते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक कई इतने काम करते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है, और बहुत सी बार उन सारे कामों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा जो सपना है, हमारा जो लक्ष्य है, वो कहीं गुम सा हो जाता है। इसलिए पूरे दिन में कम से कम हमें 15 मिनट अकेले शांत बैठना है और सोचना है कि वाकई में जो जीवन हम जी रहे हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वाकई में हम उसमें आगे बढ़ना चाहते थे। जी हाँ, कई बार हमें लगता है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन हर पल किसी काम में लगे रहना भी जरूरी नहीं है। कुछ समय बिना किसी खास काम के बिताना हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। आराम भी जीवन का हिस्सा है और खुद को समय देना भी। इसलिए हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं है। हमें हर समय कुछ ऐसी चीजें करने के बारे में सोचना है जिससे हमें पता चले कि वाकई में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हम ये सोचते हैं कि मैं अकेले बैठा हूँ, चलो यहाँ घूम आता हूँ, दोस्तों से मिल लेता हूँ, फोन चला लेता हूँ, ऐसी चीजें हम करने लगते हैं। लेकिन जब अकेले शांत बैठने का समय हमें मिलता है, तो उस समय हमें एक पेन और कॉपी लेनी है और पूरे दिन के बारे में सोचना है और पिछला बिताया हुआ हमारा समय जो है उसके बारे में भी सोचना है, और फिर हमें हमारे जीवन को देखना है कि वाकई में जो हम कर रहे हैं वो सही है। अगर हमें लगता है कि हाँ सही है, तो निरंतर हमें उसी में काम करने की जरूरत है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, कुछ बदलाव करना है, हम हमारे सपनों से पीछे छूटते जा रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि वो बदलाव कैसे करें। छोटे छोटे कदम और छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से हम बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर श्रोता साथियों यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि किस लिए हमें हमारे जीवन में अकेले समय बिताने की जरूरत होती है और ये जरूरत जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि ढेर सारी बातों को जाना, यही अब बात आती है कि अकेले समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अकेले समय को मोबाइल पर घंटों बिताने के बजाय अपने विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चाहें तो अपनी पसंद की किताब पढ़ें, दिन भर की बातें डायरी में लिखें, जैसा कि मैंने गीत से पहले भी कहा। इसी के साथ अपने अगले दिन की योजना बनाएं, किसी नए कौशल को सीखने के लिए अपने आप को जागरूक करें, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएं, अपने लक्ष्य और उपलब्धियों पर विचार करें। छोटा सा समय भी तब महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम खुद से जुड़ते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरे हमें समझे, हमारी तारीफ करें, हमारे साथ रहें, लेकिन जीवन में एक ऐसा रिश्ता भी जरूरी है जिसमें हम खुद को समझना सीखते हैं। जब व्यक्ति अपने साथ समय बिताने में सहज होता है तो वह हर समय दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सोच और प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसलिए दोस्तों, एक छोटी सी बात याद रखिए कि अपने साथ बिताया समय खुद को खोने का नहीं, खुद को पाने का समय हो सकता है। इसलिए आज की बातचीत हमें इतना जरूर समझा सकती है कि जीवन में रिश्ते, दोस्ती, परिवार जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है कभी कभी अपने लिए समय निकालना। अकेले बैठकर अपने बारे में सोचना, अपनी गलतियों को समझना, अपनी खूबियों को पहचानना और अपने सपनों की दिशा तय करना, ये सब हमें जीवन को थोड़ा बेहतर ढंग से देखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए समय निकालने और खुद को सबसे दूर कर लेने में फर्क है। अगर कोई व्यक्ति लगातार लोगों से दूर रहने लगे, हर गतिविधि से रुचि खत्म हो जाए या अकेलापन उसे परेशान करने लगे, तो ऐसे समय में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का उद्देश्य लोगों से दूर होना नहीं बल्कि लोगों के बीच रहते हुए खुद से भी अपना रिश्ता मजबूत करना है। इसलिए दोस्तों, दुनिया को समय देते देते खुद को मत भूलिए, क्योंकि आपके सपनों की उड़ान की शुरुआत भी आपसे ही होती है। इसलिए हमें हमारे जीवन में खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ पाए कि हम जीवन में सही दिशा में तो चल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में हमें किसी बड़े बदलाव के लिए बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से शुरुआत करनी पड़ती है। इसके लिए खुद के साथ बिताए गए कुछ शांत पल बहुत मायने रखते हैं। जब आसपास की आवाजें श्रोता साथियों थोड़ी कम होती है, तब हम अपनी इच्छाओं, प्राथमिकताओं और उन बातों को सुन पाते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की व्यस्तता में नजरअंदाज कर देते हैं। अपने साथ समय बिताना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल दूसरों की उम्मीदों के अनुसार तो नहीं जी रहे। अपने फैसलों पर विचार करने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है और जीवन की दिशा को लेकर स्पष्टता आ सकती है, और यही स्पष्टता आगे चलकर हमारे छोटे छोटे प्रयासों को किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ती है। इसलिए दिन भर की जिम्मेदारी के बीच अपने लिए कुछ पल बचाकर रखना स्वार्थ नहीं बल्कि खुद की जिंदगी को समझने की एक स्वस्थ आदत हो सकती है। जरूरी नहीं कि इसके लिए घंटों निकालें। कभी 10 मिनट की शांत से कुछ पन्ने लिखना या बिना किसी शोर के बैठना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि खुद को समझने वाला इंसान ही अपने सपनों को सही मायनों में पहचानता है, फिर उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा पाता है। इसलिए दोस्तों, हर दिन दुनिया से जुड़िए, लेकिन कुछ पल खुद से जुड़ना भी मत भूलिए, क्योंकि आपकी सबसे महत्वपूर्ण बातचीत कभी कभी आपके अपने सपनों से होती है। तो आशा करती हूँ श्रोता साथियों कि आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में कि क्या अकेले समय बिताना भी जिंदगी की जरूरत है, उसको लेकर जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, वासवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने में देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया की निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

नृत्य के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जरे ग्राम सभा में बोली बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जरूर बोली में रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं ये उन्हें रक्षा करे हैं। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास में असली पहचान है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन के नाम हिरते आवे कागज केरे करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोलो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथों मुनी में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमीन माते नाम लगाड़ वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपना भी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपने नाम लगाड़ो
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खा मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।